0: का और हिंदी का प्रभाव तो है ही। मुझे लगता है कि वहां पर जो संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूं, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूं मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूं। और
1: जी
0: मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत
1: हाँ
0: देर से।
1: हाँ
0: उसकी बड़ी रोचक कहानी है।
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी ये जो है, मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है,
1: जी
0: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो
1: बहुत
0: सर्वभाषा
1: सुंदर।
0: ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग्य मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग्य की आवाजाही है। यहां तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है, उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग्य मिलेंगे।
1: जी
0: लेकिन जो व्यंग्य मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है। और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है। हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूह हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है।
1: जी, तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है
0: हाँ, आ
1: आपके
0: जाता
1: ललित
0: है,
1: निबंधों में।
0: आ जाता
1: तो
0: है।
1: ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूं, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा हो रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते हैं।
1: जी
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वह एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ
0: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें, तो ये लगभग 3,000, 2,500, 3,000 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं। साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके, और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर। उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या
0: हाँ
1: बात है, क्या बात
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: आइए,
0: जी
1: आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे हैं। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास, तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ, ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं कालिदास।

0: ऐसा विलक्षण व्यक्ति,
1: जी
0: उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है
1: जी
0: और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्याधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है, उनकी उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी
0: जी जी
1: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या
0: जी
1: सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्थाली है, गिरा नयन नयन बिन उबाने। ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी।
1: बानी
0: कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूं,
1: जी
0: वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन बानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नयन बिन बानी नहीं है, नयन और बानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीजें आई हुई हैं। अच्छा मैं बताता लूं कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है।
1: जी
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनु बानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने
0: जी
1: के बाद लगता है कि
0: जी
1: कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब
0: जी
1: जाकर
0: जी
1: एक
0: जी
1: इतनी
0: जी
1: बड़ी बात कही जाती है।
0: जी
1: तो राणी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं, बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है आजाराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,
1: जी
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।
1: आइए सुनते हैं।

0: आदिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया।
0: जी,
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है। एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं। ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है। इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
0: अच्छा
1: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
0: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
1: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है।
0: जी,
1: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है।
0: जी,
1: एक दिन मैं, एक सब्जी होती है कुंदरू,
0: कुंदरू की,
1: उसे मैं जाया बाजार से, और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास, मेरे प्रिय, मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं। वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की, वो छंद की पहली लाइन है
0: जी,
1: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
0: जी,
1: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
0: जी।
1: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के इस छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को।
0: जी,
1: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं

0: अपनी कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
1: जी।
0: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आजादित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है, कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहां से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मत।
1: जी, तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: जी,
1: ये हम समझ सकते हैं। जी, तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, पगला
1: कभी भी। क्या बात
0: जी,
1: है फिल्म
0: जी।
1: पगला कहीं का
0: जी।
1: ये गीत हम सुनते हैं और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
0: जी,
1: कर
0: जी,
1: पाएंगे।
0: जी जी जी हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिनी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मित्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूं मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से थे नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूं मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाओ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहां जब पहुंचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद उन पर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूंगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
0: क्या बात है।
1: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी उनकी, उस समय उम्र हो गई थी और ज्यादा, करीब करीब आप मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी

0: यार हमने फोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था।
1: जी
0: तो विशेषांक निकला 120 पेज का। तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक की वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है।
1: जी
0: उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
1: जी जी जी
0: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है।
1: जी बिल्कुल
0: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसको
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे
1: धीरे
0: धीरे,
1: धीरे।
0: जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है,
1: जी,
0: जहां आप
1: आप
0: पहुंचे
1: पहुंचे
0: छलांगे
1: छलांगे
0: लगाकर
1: लगाकर,
0: वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे
1: धीरे
0: धीरे।
1: धीरे।
0: पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए,
1: जी
0: किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया
1: गिराया
0: न
1: न
0: खुद
1: खुद
0: को
1: को
0: उछाला,
1: उछाला।
0: कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता
0: जी
1: दिया है
0: जी
1: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ।
0: जी 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़कर के हर विधा में लिखने वाले। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था, उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं।
1: जी सबसे
0: साहित्य
1: बड़ी
0: ये होता
1: कला
0: है,
1: है।
0: साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो राइडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना,
0: जी जी
1: शौक
0: जी
1: रखते हैं।
0: जी जी
1: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिना चलिया रे, इसको सुनना।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा,
0: ज्यादा ही रहा,
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: जी, असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन सब कविताओं पर मिले, चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी, मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ऐसा संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती है। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
0: जी बिल्कुल, प्रोफेसर राम दर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो इस संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा कि संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: राम दर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर ये प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था, और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
0: जी,
1: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहां तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी वो दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी, कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
0: अच्छा,
1: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया, तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं
0: जी,
1: और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से

0: प्रभावित हुए। हम इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी,
1: हैं,
0: जी हाँ जी।
1: उसके बाद
0: जी,
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
0: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं।
1: जी,
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरा
0: मेरे
1: गीत
0: गीत
1: अमर
0: हमारे
1: कर
0: कर
1: दो,
0: दो। ये मुझे बहुत पसंद
1: बहुत
0: है
1: सुंदर
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन
0: जी।

0: खाड़ी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है, वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं, वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीजें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम है, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं। ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और

0: बाल हथेलियां किताब के नाम माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आजादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे हम विकास नहीं कर सकते, और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। ये दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खास करके स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, वो योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है
0: जी।
1: जैसे उनकी एक कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है, और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है? कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगे, उनकी जो पात्र हैं वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं है। इस चीज को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं न कहीं उसको स्वीकृति देता है, और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है उसमें साहित्यकारों का योगदान है, और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
0: जी, बहुत सुंदर।
1: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ। मैं मानता हूँ कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा, उसे हमने से डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था, क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं, तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का, और उसका मैंने संपादन किया, और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
0: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: जी उंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है, मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया, उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है, और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं, और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है, और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ, बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें, मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट

0: पीछे समय छोड़
1: जी
0: दूंगा,
1: जी
0: मुझे
1: जी
0: आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीजें आए,
1: जी
0: तो सोचता ये हूं कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूं तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की
1: जी,
0: सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं उनका। एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल
1: क्या
0: से,
1: बात है,
0: नदी
1: अरे
0: मिले सागर से, ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: Tarang, tarang.
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बेगम अख्तर की गाई इस गजल से।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों की।

वर्षा ऋतु एल्बम से आप सुन रहे थे तलत महमूद का गाया ये गीत। रचना थी मुरली मनोहर स्वरूप की, संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल। कलाम है कतील शिफाई का, मौसीकी तलत अजीज की।

0: सनसेट पॉइंट एल्बम से भूपेंद्र केसवर में ये गीत, रचना गुलजार की, संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: आसमान का रंग बदल रहा था, रात कच्ची पड़ रही थी।
0: ये स्वर गुलजार का है।
1: पास के पेड़ से उड़ा और सुबह गुलाने आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा। चल

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबान

झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा, हर तमन्ना, हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे, बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी, जफा झूठी, सितम झूठा, करम झूठा।

हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूं।

मोहब्बत का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा हमको मंजूर है। अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। किया था वादा कि कल आएंगे चराग जले और तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है सब तेरी बदौलत है। बराबर खफा हो बराबर मनाए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, क्योंकि भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं। बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं, और ये हुस्न वाले जब भी लेते

नजर झुकाओ, हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुस्न चाहे तो लग जाए आग पानी में। अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में।

0: सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवा न करो। चांद ऊंचा
1: डाकू हसीना फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का रंग तिरंगे प्रोग्राम खत्म होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों

0: का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मौसम फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, मदन मोहन का

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये घुमारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और

0: बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपकी कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम यादों की महफिल। खिलौना फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत, आवाज मदन मोहन की।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर, अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत, संगीत शंकर जयकिशन का था और फिल्म थी जिंदगी। गृह प्रवेश फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज, गुलजार के बोल कनु रॉय का संगीत है।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार कनु रॉय। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो भाई, जो लोग, जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं उपस्थित, तो उन्हें तो आज की इबारत की जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत लिखते हैं और उसमें जो शब्द होते हैं उन शब्दों से गीत हम श्रोताओं से कहते हैं ढूंढने के लिए, और कुछ पहेलियां होती हैं, गाने होते हैं, कुछ गाने श्रोताओं की पसंद की भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो हम आज की इबारत जरा आपको पढ़कर सुना देते हैं। आंखें मन की खूबसूरत इबारत है, इनमें नींद और ख्वाबों का अनंत आसमान भी, यहीं सपने जन्म लेते हैं और उम्मीदों के रंग आकार पाते हैं। कभी ये खामोश रहकर भी दिल की हर बात कह देती हैं आंखें, तो कभी एक नजर ही पूरी कहानी लिख देती है। आंखों में इश्क का पहला एहसास प्यार की रोशनी ठहरती है, और कभी कोई चुपके से दिल भी चुरा लेता है। आंखों की चमक में हंसी खिलती है, खुशी झलकती है, और बिछड़ने का दर्द आंसुओं में ढल जाता है। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनमें यादों की महकती खुशबू होती है। आंखें सचमुच मन का आईना है, इनमें नींद भी है, ख्वाब भी, सपने भी, बातें भी, हंसी भी, शब्द भी, खामोशियां भी, और सबसे बढ़कर इनमें वो जादू है जो बिना कुछ कहे किसी का दिल चुरा लेने की ताकत रखता है। किसी की आंखें देख चौदहवीं का चांद याद आता है, और अभी ये भी धुन सुनी थी आपने इसी गाने की। तो बताइए, आपकी आंखों में पहला ख्वाब कौन सा चमका था? रात भर किसी के लिए जाकर उसकी फिक्र कब की, किस सन में, किस साल, कौन सा ऐसा लम्हा था किसी के लिए आप जागते रहे? अपने बच्चे के लिए सभी माँ जागती है, सभी पिता जागते हैं। कभी जब बच्चा रोता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या यूं ही बच्चे को थपकी देते हुए, ऐसे बहुत सारे लम्हात होते हैं जब आप जागते हैं किसी के लिए। कभी आपके नयन किसी से डर जाते हैं, क्या आप किसी की आँख की रोशनी बनना चाहते हैं? तो हमें जरा बताइए, फिलहाल बताइए कि वो कौन से शब्द हैं जिनसे आप गाने चुन सकते हैं। तो गानों की फेहरिस्त आप जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके गाने और हमारे गाने एक हो जाएं, तो हम वही गाना सुनवाएंगे। और दोस्तों, आंखों में नींद होती है, ख्वाब होते हैं, कई बार जब हम जागरण करते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ लिख डालते हैं, ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? आंखों से दुनिया देखी जाती है, हम इंसान को परखने का काम भी आंखों से ही करते हैं, और आंखों से पढ़ाई लिखाई करके अपनी एक विचारधारा गढ़ते हैं। आपने क्या किया है बताइए, आप अपने अनुभव साझा करते रहिए। और हाँ, अगर जब इस संसार से विदा के बाद अपनी आंखें अगर किसी को दान कर दें, तो किसी की आंख की रोशनी बन सकती है। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है तो वो भी बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला कार्यक्रम का। सबसे पहले प्यासा फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी

प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन। गुरुदत्त और माला सिन्हा, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया, और आज गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुना है, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो जो गाने हमने चुने हैं वो आंखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं, तो जरा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आंखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारी पर होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली, और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, खास तौर से अपनी संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों, और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, बताते चलिए। फिलहाल सीआईडी

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। जानिसार अख्तर के बोलते हमने पूछा भी था आपसे सवाल, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही लिखा है। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म सीआईडी और देव आनंद शकीला। हमने ये भी आपसे सवाल पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि घर से किसी प्रियजन का बिछड़ना या अचानक गुमशुदा हो जाना रात भर जागने को विवश कर देता है। हर एक पल उसकी चिंता बनी रहती है, रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है, मन हर पल बेचैन रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वाकई बहुत ही खूबसूरत आज की इबारत है। आंखें दिल का आईना होती हैं, जो बात हम जबान से नहीं कह पाते वो बातें आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ ऐसे बेमिसाल अदाकार हो चुके हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, गहरा दर्द हो, या फिर बिना कुछ कहे जताया गया प्यार हो। दिलीप साहब, गुरुदत्त जी, अमित जी, मधुबाला, मीना कुमारी ऐसे कलाकार थे जो उपरोक्त कही गई भावनाएं बिना कुछ बोले ही अपने आंखों से बयां कर देते हैं। वैसे आम जिंदगी में भी कुछ लोगों की आंखें बोलती हैं। कुछ लोग जो झूठ बोलने के आदी होते हैं उनकी आंखें उनकी बातें छुपा लेती हैं। तो अपनी आंखों को पारदर्शी बनाए रखिए। फिलहाल सुनिए अनारकली फिल्म का ये गाना। अब जरा बताइए कि इसे लिखा किसने है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा है कि किसके लिए आप रात भर जागे, बताइए क्या आपके लिए कोई रात भर जागता है। कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में कुछ। जब खास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फोन एक माध्यम है जब आप फोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछड़ जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं, कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नजरिए से एक कहानी बयां करती हैं। दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आंखें इंसान के लिए, वो आंखें जिससे हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इन आंखों की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये अपनी खुशी दुख सबसे पहले व्यक्त करती हैं। इंसान शब्दों से तो बाद में बताता है, पर उससे पहले ये आंखें बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में दो अभिनेताओं के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार प्राण। अभिनय में ये हाथों या शरीर से जितना अभिनय नहीं करते थे, उतना सिर्फ आंखों से अभिनय करते थे। कई बार निर्देशक और कैमरामैन सिर्फ इनके चेहरे का क्लोजअप लेते थे और पूरा सीन सिर्फ इनकी आंखें बयां कर देती थीं। चलिए अब फिर एक जागने वाला गाना है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि बताइए आप किसके लिए कभी जागे, आपके लिए कौन जागरण किया रात भर। फिल्म बहुरानी, गीतकार का नाम पूछिए और संगीतकार का नाम। लता मंगेशकर की आवाज।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती है, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आंखियां और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आंखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आंखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आंखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहुरानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी, तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आंखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं, भी गाने भी तो सुझाते चलिए कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आंखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, खास तौर से जब आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आ पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी के लिए? सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन, साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, सुनील दत्त, शकीला। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है। तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आंखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था, किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी, जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी, इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पांव के पायल की आवाज भी न मालूम पड़े। खैर, एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियां हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और वहां जाकर घर का खाना खा सकें, और कभी किसी के इंतजार में भी जगे, और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए। जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतजार किया जाता था कि सुबह 6 बजे या 4 बजे ट्रेन आएगी, नींद नहीं आती थी, ऐसा भी

होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी 12 गीतों की लिखी इबारत में से चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत शामिल हो गया, क्या बात है। ऐसे बहुत सारे श्रोताओं के गाने शामिल हो रहे हैं और अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसके लिए भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आंखों की महकती खुशबू गुलजार साहब महसूस करते हैं। तो सुनिए ये गाना और जरा बताइए कौन है इसमें हीरो हीरोइन। फिल्म घर, संगीतकार राहुल देवर्मन, गीतकार गुलजार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें। हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

घर फिल्म का गाना था। हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेहरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर में उतर जाती है। किन आंखों से आपको डर लगता है ये जरा बताइएगा, माँ पिता, टीचर, पत्नी, पति या किसी दोस्त से? मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा, जबकि

दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली, ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है। तब भी माँ की आंखों में अगर जरा भी नाराजगी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं, जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात, भरे भौन में करत है नयनन ही सो बात, और ये आंखें दिल की जुबा है, और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफर कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में, फिर भी इबारत की ओर आंखें नजरअंदाज नहीं कर सकती। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आंखें ऐसी हैं कि आंखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं, और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज थी, कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है।

एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की बात चली तो मैंने बहुत सी पुराने फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आंखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज थी, कैफी आजमी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है, और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराजगी और भी बहुत कुछ नजर आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं पर छुपाती भी बहुत कुछ हैं, और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आंखें। इन्हीं आंखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं इन आंखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की चली है तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का, कभी दुख का। संगीतकार का नाम भी जरा बूझिए।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब। और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया। संगीतकार मदन मोहन, आवाज लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आंखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी। 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इन्होंने इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आंखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आंखों से डर लगता था, जरा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आंखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और अपनी और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वे आत्मा की खुला झरोखा है, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहां 14वीं के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नजाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आंखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आंखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं।

आप बताइए, आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा? फिल्म थोड़ी सी बेवफाई। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, गुलजार के बोल खयाम का संगीत था। और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबानाज में, राजेश खन्ना पर्दे पर, बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये

ये देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत। हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है। हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है, और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं। फिल्म हंसते जख्म का और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुंचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि साहित्य संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, गाने की झलक, फिल्म ऊंचे लोग, मोहम्मद रफी की आवाज। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर पता है आपको

ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों का सफर ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड पर चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भाई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की ढेर सारी टिप्पणियां कैसे शामिल होंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा एक भी गीत शामिल नहीं हुआ, और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे आज तो बहुत सारे गाने शामिल हुए। तो अब देखिए कि बहुत सारे श्रोताओं की पसंद इसमें शामिल थी। और अब सिर्फ इतना बता दें, आज के इस सुरीला सफर का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है गांव और खेत पर। गांव और खेत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर गांव शरीर है तो खेत उसकी आत्मा है। अगर गांव एक गीत है तो खेत उसकी मधुर धुन है। दोनों का संबंध उतना ही गहरा है जितना धरती और आकाश का, नदी और किनारों का, या बीज और वृक्ष का। गांव की पहचान उसके खेतों से होती है और खेतों की जीवंतता गांव के खेतों से। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं धरती के माथे पर स्वर्णिम तिलक लगा रहे हों और दोनों हाथों से अपना सारा चमचमाता सोना धरती पर लुटा रहे हों। ओस की बूंदें पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती हैं और हल्की हल्की चलती ठंडी हवा फसलों के साथ मिलकर एक मधुर राग छेड़ देती है। दूर तक फैली हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी ठंडक भरा सुकून दे जाती है।

झर झर झर झर झरने झूमे।

केवल अन्न उगाने की भूमि भर नहीं होते, वो तो किसान के सपनों की पाठशाला भी होते हैं। हर बीज में एक आशा छिपी होती है, हर अंकुर में एक भविष्य और हर फसल में अनगिनत परिश्रम की कहानियां आकार ले रही होती हैं। किसान जब मिट्टी में बीज डालता है, उस समय वो केवल खेती नहीं करता बल्कि विश्वास बोता है कि समय आने पर ये धरती उसकी मेहनत को फल में बदल देगी। गांव की पगडंडियां खेतों तक पहुंचती हैं और खेतों की मेड़ें जीवन के संघर्ष और सफलता की कथा कहती हैं। बैलों की धीमी चाल, हल्की रेखाएं, फसलों की लहराती बालियां और किसानों के माथे पर चमकता पसीना, ये सभी मिलकर परिश्रम का एक ऐसा महाकाव्य रचते हैं जिसे पढ़ने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती।

ऋतुओं का सबसे सुंदर रूप गांव और खेतों में ही दिखाई देता है। बसंत आता है तो सरसों के पीले फूल धरती को सुनहरा परिधान पहना देते हैं। वर्षा की बूंदें खेतों पर पड़कर जीवन का संगीत रचती हैं। शरद ऋतु में पकती फसलें ऐसे झूमती हैं मानो प्रकृति अपनी सफलता का उत्सव मना रही हो। हर मौसम अपने साथ एक नया रंग, नया भाव और नई कहानी लेकर आता है। गांव और खेत हमें सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकता समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि श्रम

संतोष और प्रकृति के प्रति सम्मान में समाहित है। ये हमें बताते हैं कि धैर्य, परिश्रम और विश्वास से ही सपने साकार होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 2:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार सुनिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के

0: मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बानिस ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।

0: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
1: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया

0: critical minerals.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
3: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
2: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस

0: घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
0: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं।

0: श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
1: ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
0: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
1: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश भेजने के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
1: पिछले 2 दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
1: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबुएलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5,000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
0: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
1: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
0: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
1: बिल्कुल।
0: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
1: जी।
0: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
1: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
0: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी। जबकि सकरे वलय सूखा या

0: मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
3: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
3: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
3: जी पिताजी।
4: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
3: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
3: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।

0: मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
0: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
0: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी, हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
2: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रुमर्दन को भी ले जा रहे हैं।
2: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
0: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी?
0: ने कल हस्तिनापुर जाना है।
2: पर क्यों पिताजी?
0: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
2: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
3: जी पिताजी,
2: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
0: बहुत अच्छा।
2: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
2: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
0: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
2: जी पिताजी।
0: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
2: अच्छा पिताजी।
0: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
2: अच्छा
1: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
4: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
0: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
3: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
0: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
2: जी पिताजी।
0: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे?
2: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
2: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ ये तो है।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
5: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है।
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई।
4: इस वर्ष के

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: चलो चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
1: चलो चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
5: ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
6: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो।

0: चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही न कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
0: क्या
1: आचार्य तो वही पहुँच गए हैं। और हाँ वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
0: हाँ, हाँ। अच्छा हुआ संकट टल गया, अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
0: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
0: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
2: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: की सहेली सुनने वाली हमारे सभी सखियों सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया न्यूज समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहे और अपने कार्य करते रहे। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खराब बनना पड़ता है।
1: और कि हमारी श्रोता भाई बहन भी इतनी बड़ी ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों,
1: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
0: जी।
1: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे साथ
0: बिल्कुल
1: ही।
0: हाँ, और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती है और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है कि अपील होती है कि भाई जो जहाँ है वहीं रहें, और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनके शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो, ये सारी तो जो चीजें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे,
1: दिखते हैं ऐसे सीन। और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना दीजिए, तो हम मैंने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: फिर अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं।
0: हाँ।
1: और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
0: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए तो हम कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना,
1: मेरा गुल्लक में गुल्लक
0: उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
1: तो यानी गुल्लक हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है। भले ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे, बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
0: बिल्कुल, और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है ना। और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं, और कभी हम किसी की

0: जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है, तो आज जब आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की,
1: जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
0: देखो अब मैं क्या कर रही हूँ।

0: सोनाली, कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम छांट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में।
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना, इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत
0: बिल्कुल
1: सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता, है ना।
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी, जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे, उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लू कंबा गांव में मंजुनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है। दीपा, ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजुनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई, तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था, और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा, और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।
0: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी। इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे, ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है, ये
1: नृत्य
0: नृत्य है, इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्पा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनके भाषा में, उनकी वहां की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे।
0: जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आजाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
1: जोगती नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगती नर्तकी लेट कर केवल मुंह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए, है ना,
0: बिल्कुल, और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
1: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
0: वो आगे कहती हैं इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है, और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
1: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष स्थान का संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी
0: जी
1: बड़ी बात है ना दीपा।
0: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगती नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
1: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कह दिए कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
0: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
1: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
0: जी
1: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में
0: ये बात
1: सचमुच।
0: तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत
1: गीत हो जाए,
0: सुमधुर गीत।
1: सुनते हैं गीत।

0: सुना ली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा।
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहां पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो

0: को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहां पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना, चल सकता है ना ऐसा।
0: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए एक छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भरपेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी। जब वो मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देख रेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है।
1: बात
0: बहुत
1: तो सही है।
0: अच्छी यादें आपने साझा की है।
1: तो यादें साझा साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें।
0: हाँ
1: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है, डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मजा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हजार रुपए थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए
0: तो
1: तो गुल्लक
0: इसलिए
1: गुल्लक
0: हमें
1: करके।
0: ये संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है, तो
1: बैंक
0: बैंक
1: है
0: में
1: या आप
0: रखे।
1: कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
0: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है, जो बच्चों के को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है, जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना। इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय, यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था, जो आज भी यादों में ताजा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैग भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है।
1: आजकल तो बहुत अलग अलग डिजाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपए मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपए मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा,
0: और
1: आधा
0: कुछ
1: खर्च
0: खर्च कर
1: खर्च
0: लूंगी।
1: करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूं।
0: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा
1: बिल्कुल
0: लगता है कि
1: सही।
0: आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें, कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपए या 10 रुपए देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी।
1: जी
0: धीरे धीरे जब
1: हाँ,
0: सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी, दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
1: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ

0: बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे। वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
0: बिल्कुल सही कहा, एक एक रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
1: और दीपा, ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
0: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे, वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे।
1: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था ना
0: हाँ
1: उन्हें।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: सही कहा।
1: एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था। और
0: देखो हाँ, एक और संदेश पढ़ लीजिए।
1: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
0: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है, तो एक अंतराल के बाद हम फिर
1: फिर
0: आते हैं।
1: हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने
0: बहुत
1: सारे
0: पैसे
1: पैसे
0: हैं, बिल्कुल।
1: हैं।
0: और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है, भावनाएं। बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है।

0: हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दीवार होती है, दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है।
1: तो सुनवाते हैं गीत।

0: हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है।
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें, और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई।
0: हाँ।
1: इस तरह से भी यानी देखिए, यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती,
0: नहीं होती,
1: और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना

0: इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना पड़ता है
1: बिल्कुल।
0: सचमुच।
1: और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली, कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
0: किस तरह की परवरिश।
1: परवरिश कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
0: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कैसे कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है।
1: सही
0: तो
1: बात है।
0: पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं, पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
1: कैसे
0: करते।
1: कर रहे हैं। और
0: एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो, तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे, तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए, आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट, तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती हैं कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है, इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है,
0: जरूरी
1: क्योंकि
0: है।
1: जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे, वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक एक अलग विषय है जो कि विचारणीय है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली भांति समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था, और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना, तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करे, सोच समझ के उनसे वादा करना
1: क्योंकि
0: उतना
1: आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत
0: स्मार्ट
1: सतर्क, और हाँ,
0: होते।
1: सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
0: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये

0: बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है कि
1: हाँ
0: बचपन में माँ
1: जी
0: ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनसे इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और
1: हाँ
0: ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया तब मैं चुप हुआ, बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूँ, पहना था जब मैं 7 साल का था। तो
1: यानी
0: ये तो
1: सर्दी के जो मोटी कोट
0: हाँ,
1: होते हैं
0: वो भी गर्मियों
1: वो
0: में
1: गर्मी में पहनना इस तरह की जिद करने
0: हाँ
1: लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं।
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहां पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है, तो हो जाएगी बस थोड़े ही दिन में, इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना, तो हम चिमटे से निकाल लेते
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है
1: थे।
0: कि कहां से क्या क्या चीजों की में दिमाग चल जाता है सबका, और देखिए हमें भी एक आइडिया मिल गया।

0: छोटी सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। तो ऐसी भी शरारत
0: ऐसे
1: बच्चे
0: भी
1: करते हैं।
0: शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये
1: क्या
0: बात
1: बात
0: सही
1: है।
0: है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके
1: करके दे।
0: दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे। मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की मतलब उन्होंने कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जांच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमी भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें। और सबसे जरूरी बात है कि जो बारिश में जो मेन होल खुले रहते हैं
0: जी
1: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं तो
0: अभी भी
1: उसमें
0: ये जबकि इतनी बातें और
1: हाँ
0: इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं फिर
1: जी
0: भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं इस चीज
1: केयरलेस हो
0: को,
1: जाते
0: केयरलेस
1: हैं।
0: हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते। जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई जरूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की जरूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना?
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो जिंदगी है।
0: जी बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या जिंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़
0: बात
1: जाती
0: तो
1: है।
0: बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना?
1: जी, बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए। कि कभी कभी
0: बिल्कुल
1: ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टॉयल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है। और एक संदेश कहता है कि हम जहां पर रहते हैं या रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहां पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। जो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहां पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं?
0: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का,
1: पर
0: विदा
1: उससे
0: लेने
1: पहले
0: का।
1: श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है।

0: आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी, और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का। एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना? वो गजब के दिन थे।
1: दीदी, चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना? बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार, और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। सुनते हैं खुददार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डिडवाना कुसावन जिले के छोटीवेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा बहुत बढ़िया, बारिश नहीं हो रही है?
1: राजस्थान में अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, दक्षिण राजस्थान में तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया, ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह हैं।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी।

0: खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल अच्छी होती है।
0: बढ़िया, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है, उनका गाना है वो, के रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी, बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्य प्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी।
0: जी सत्य प्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी।
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा

0: मनोरम वातावरण लगता था सावन का, चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी बहुत ही मन भावन रहती थी, और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है, और अक्सर हम जाया भी करते हैं गाँव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
1: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
0: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
1: अच्छा।
0: तो थोड़ी सी याददाश्त भी अब थोड़ी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
1: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे, और ये भी बताइए आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
0: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष,
1: अच्छा।
0: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ, सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है, तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें, और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं और
1: बिल्कुल बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका, और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी। तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है?
1: उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह, और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं, हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
1: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ।
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के गाने?
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता, भगवान हमें खुद देखते हैं। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें
0: जी जी
1: दीदी मैं।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं

0: तूने किसको याद किया। ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा थ्योरिकली, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह है ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001 सात 2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष दे करके सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ के कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी।
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी

0: बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हो रही है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
1: जी,
0: पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे,
1: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
0: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही है, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
1: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
1: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो। हेलो फरमाइश सुनने वाले हो, प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमदुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है मुंबई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है उधर? बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना, तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं। त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है, कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना।
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है।

0: बहन जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
1: बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में, बताइए।
0: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है असम, और आता है मेघालय,
1: अरुणाचल प्रदेश,
0: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
1: मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए।
0: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ, ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए, ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा।
1: जी जी जी,
0: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी,
1: जी बिल्कुल, देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल।
0: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
1: तो ये शक्तिपीठ है
0: बिल्कुल।
1: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू, वो नाम आपको पता है?
0: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
1: जी,
0: और उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया
1: राहुल देव बर्मन, तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए तो।
0: जी जी,
1: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
0: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरू सुल्तानपुरी जी,
1: जी गीतकार,
0: संगीत तैयार किया है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया, अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोन।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। 2-3 दिन पहले तो बहुत गर्मी थी।
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं, अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
0: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
1: कई बार की है। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था। मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वही बगल में सारनाथ है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: सारनाथ में जैसा आप जान ही रहे अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में,
0: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है, तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: कजरी जो है कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: अरे वाह क्या बात।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो,
0: तो गा के सुनाइए गनवा।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
1: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला, यार रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
0: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सखी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी जी बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है, याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका गेरा रे
0: बरेली
1: बरेली
0: के बाजार
1: के
0: में। और बरेली की और कोई
1: जी।
0: खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम
1: हाँ जी
0: करते हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते क्या बनाते हैं?
1: मैम जी, हम सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की।
0: शादियों में।
1: हाँ मैम जी,
0: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662। मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।
2: FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार और गुड इवनिंग साथियों, आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आज के आपकी दोस्त और होस्ट अंजलि। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में देंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही करवाएंगे आप सभी का मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ युवाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे सितारे होते हैं जो अपनी चमक से पूरी स्क्रीन को रोशन कर देते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो अभिनय को ही एक नई परिभाषा दे जाते हैं। दोस्तों, आज यादों के झरोके से हम जिस महान शख्सियत को याद कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों और दमदार आवाज से हर किरदार में जान फूंकी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनय के सम्राट संजीव कुमार अभिनेता की। दोस्तों, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे दिलों में जिंदा रहती हैं। ऐसी ही एक आवाज थी हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता संजीव कुमार की। उनकी शांत, गंभीर और सहज आवाज सुनते ही मन में अपनापन और सुकून का एहसास होता है। दोस्तों, संजीव कुमार, जिनका असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था, उनका जन्म 9 जुलाई 1938 को हुआ था। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए संजीव कुमार का जीवन इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर आपके अंदर टैलेंट और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड के ठाकुर बन गए।

तो चलिए दोस्तों, उनकी यादों के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म बादल से, और आवाजें दी हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे यह गीत जिसे लिया गया था फिल्म बादल से, और आवाजें दी थी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
3: लग जा गले के फिर हसी रात।
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 तक आकाशवाणी झांसी पर।
3: मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से।
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का युवाणी कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस विषय की जो हमारे फोन से लेकर हमारे भविष्य तक छा चुकी है। जी हाँ मैं बात कर रही हूँ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। क्या यह हमारे लिए वरदान है या रोजगार के लिए कोई अवसर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। दोस्तों आज शिक्षा स्वास्थ्य कृषि बैंकिंग और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों सुनवाते हैं यह वार्ता। वार्ता है AI की रोचक दुनिया और वार्ताकार हैं मानव दुबे।
8: आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में स्वागत है। आज हम एक अत्यंत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जो विशेष रूप से युवाओं के बीच चर्चा का लोकप्रिय विषय बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे AI के नाम से भी जाना जाता है। AI यानी वो तकनीक जो इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता रखती है। आज के समय में AI हमारे जीवन के हर छोटे बड़े काम करने की क्षमता रखती है। आज के समय में AI हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को या तो प्रभावित कर रहा है या भविष्य में प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह क्या है और हमारे दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है? क्योंकि AI हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इसके बारे में जानना अब जरूरी हो गया है। तो आइए AI के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। तो आइए AI

AI को समझते हैं कि AI है क्या। AI एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को सीखने, समझने, समस्या सुलझाने, निर्णय लेने और रचनात्मकता की मानवीय क्षमता प्रदान करती है। AI से लैस होने पर एक सरल निर्देश भी दस्तावेजों और तस्वीरों को दृष्टिगत रूप से समझने में सक्षम हो जाता है। AI के रोजमर्रा के उदाहरण हैं वॉइस असिस्टेंट्स जो मानव भाषा को समझ सकते हैं और वॉइस कमांड्स का पालन कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण वीडियो या म्यूजिक शेयरिंग एप्स का उपयोग करते समय हमें मिलने वाले सुझाव हैं। ये एप्लीकेशंस आपकी रुचि का पता लगाने के लिए AI वाले एल्गोरिदम्स का उपयोग करते हैं, इसलिए आपको उसी के आधार पर कंटेंट साझा कर सकते हैं। इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो AI आपके पुराने खरीदारी के पैटर्न को देखकर आपके नए प्रोडक्ट्स सुलझाता है। AI ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। आइए कुछ उदाहरण देखें। स्मार्टफोन और वायरलेस असिस्टेंट। AI के कारण अब हम अपने स्मार्टफोन से बातचीत कर सकते हैं। आप सिर्फ AI का नाम बोलते हैं और आपका फोन जवाब देता है, जैसे एक दोस्त। AI के नाम को आसान कर दिया गया है, जैसे समय की जानकारी प्राप्त करना, मौसम की जानकारी या कोई सवाल पूछना अब बहुत ही आसान हो गया है। AI ने हमारे घरों को भी स्मार्ट बना दिया है। आप स्मार्ट लाइट्स और स्मार्ट थर्मोस्टैट्स का उपयोग करके बिजली की बचत कर सकते हैं। AI की मदद से घर के उपकरण आपकी दिनचर्या के अनुसार खुद ब खुद काम करते हैं। चैटबॉट्स जो 24 घंटे ग्राहक सेवा को सक्षम करते हैं। बैंकिंग एप्स हमारे लेन देन संबंधी रिकॉर्ड को प्रबंधित करने और खरीद इतिहास रखने के लिए AI का उपयोग करते हैं, जिससे खर्चों को ट्रैक करना आसान हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए AI का भी उपयोग किया जा सकता है। AI डॉक्टरों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। AI आधारित मशीनों स्कैन रिपोर्ट्स को देखकर बीमारियों की पहचान तेजी और सटीक तरीके से करती है। उदाहरण के लिए कैंसर की प्रारंभिक पहचान में AI से मदद ली जा रही है। इससे इलाज और जल्दी हो पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र आंकड़ों का उपयोग करके AI व्यक्ति के सीखने के तरीके और विशिष्ट विषयों में रुचि विश्लेषण करके अनुकूली शिक्षण प्रणाली प्रदान कर सकता है। उपयुक्त पाठ्यक्रम सुझाव प्रदान करके यह सीखने को आसान बनाने में मदद करता है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। AI का सबसे अधिक भयावह प्रभाव हमेशा से नौकरी बाजार पर माना जाता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि AI ने धीरे-धीरे कुछ नौकरियों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, लेकिन यह श्रमिकों के लिए AI संचालित वातावरण के अनुकूल होने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग आवश्यकताओं के माध्यम से नए अवसर भी पैदा कर रहा है। AI डाटा पर निर्भर है। जितना अधिक डाटा, उतना अधिक AI सटीक निर्णय लेने में सक्षम होता है। यह डाटा हर जगह से निकाला जाता है, हमारे फोन से, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया आदि। और इस उद्देश्य के लिए हमारी गोपनीयता को नजरअंदाज किया जाता है, जो हमारी गोपनीयता के अधिकार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। AI द्वारा हमारे निजी डेटा को बिना हमारी जानकारी के कंपनियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसका उदाहरण ऑनलाइन विज्ञापन है, जो हमारी पसंद नापसंद को ट्रैक करके दिखाए जाते हैं। यह डाटा गलत हाथों में जा सकता है, जिस कारण हमारी व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है।
त्रुटिपूर्ण निर्णय

0: पूर्वाग्रह। एआई हर बार सही निर्णय नहीं लेता। उदाहरण के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक में कई बार गलत पहचान की समस्या आई है। इसी तरह एआई आधारित सिस्टम में अगर डेटा के पक्षपात हो तो उसके निर्णय भी पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। यह समस्या न्याय प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी गंभीर हो सकती है। एआई के साथ एक बड़ा मुद्दा है, डिजिटल असमानता। बड़े शहरों में रहने वाले लोग जहां एआई का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग सीमित है। इससे समाज में एक असमानता बढ़ सकती है, जो लोगों को तकनीक तक पहुंच नहीं बन पा रहे, वो पीछे छूट रहे हैं। एआई की वजह से जहां एक ओर इंसानों का काम आसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मानव कौशल की आवश्यकता कम होती जा रही है। उदाहरण के तौर पर जब सारा कार्य एआई के द्वारा कराया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों का सृजनात्मक और सोचने समझने का दायरा सीमित हो जाता है। जब लोग स्मार्ट डिवाइसेस से घिर जाते हैं तो उनके अधिकतम निर्णय एआई द्वारा लिए जाने लगते हैं। इन डिवाइसेस पर निर्भर होने के कारण उनके निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। अंत में एआई बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तकनीक है जो हमारी जिंदगी को सुविधाजनक बना रही है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके नुकसान और चुनौतियों को भी समझने की जरूरत है। एआई का सही उपयोग हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, जबकि इसका दुरुपयोग हमें परेशानियों में डाल सकता है। हमें समझना होगा कि एआई का भविष्य कैसा होगा। यह हमारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एआई का उपयोग नैतिक रूप से और समाज के हित में करें। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि एआई का सही उपयोग हो और हम एक बेहतर, सुरक्षित और विकसित भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता, एआई की रोचक दुनिया, और वार्ताकार थे मानव दुबे। दोस्तों, आज की तारीख में अगर आपके पास एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ा सा डिजिटल हुनर है तो आपके पास अवसर की कमी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लिखना, फोटो खींचना या वीडियो बनाना पसंद है तो कंपनियां आपको अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अच्छे खासे पैसे देने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, आज हर यूट्यूबर, हर रील्स बनाने वाले और हर बड़ी कंपनी को अच्छे एडिटर्स की जरूरत है। यह हुनर आप घर बैठे कुछ ही महीनों में सीख सकते हैं। अब हमारे कई युवा सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम तो छोटे शहर से हैं, हम ये सब कहाँ से सीखें और पैसे कहाँ से लाएं? तो दोस्तों, यही तो डिजिटल दुनिया की खूबसूरती है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत कम कीमत में उपलब्ध हैं, बस आपके अंदर सीखने की वो भूख होनी चाहिए। तो दोस्तों, देर किस बात की, रील देखना बंद कीजिए और रील के पीछे का हुनर सीखना शुरू कीजिए, ताकि आप भी आगे बढ़ सकें और घर बैठे कमा सकते हैं। स्मार्टफोन को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, अपने सुनहरे भविष्य का हथियार बनाइए। तो दोस्तों, हमने बातें तो बहुत कर ली हैं और आगे भी करेंगे, मगर उससे पहले सुनवाते हैं कार्यक्रम का यह दूसरा गीत, जिसे लिया गया है फिल्म बरसात से और आवाज दी है समीर और अलका याग्निक ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का युववाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, बारिश का मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही यह कई बीमारियों को भी साथ लेकर आता है। इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी हमें स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है। दोस्तों, सबसे पहले पीने के लिए हमेशा साफ और उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करें। दोस्तों, दूषित पानी से दस्त, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। दूसरी बात, भोजन हमेशा ताजा और स्वच्छ रखें। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों

से बचें, क्योंकि इनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना एक अच्छी आदत है। दोस्तों, बारिश के मौसम में घर और आसपास पानी जमा ना होने दें। रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर जरूर रखें। याद रखिए, स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। छोटी छोटी सावधानियां हमें और हमारे परिवार को कई बीमारियों से बचा सकती हैं। इसी संदेश के साथ मैं अंजलि आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा साथ पसंद आया होगा और साथ ही आपने कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाया होगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, यह आप हमें खत लिखकर बता सकते हैं और अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारे हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम युवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कानपुर रोड झांसी, और हमारा पिन कोड है 284128। अब इजाजत दीजिए अपनी युवा साथी अंजलि को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम विविधा का।

0: Debida.
1: विविधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को आपकी दोस्त उषा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी कैसे हैं? हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथियों, आज हम विविधा कार्यक्रम में विविध विषयों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। आइए हम आपसे चर्चा करते हैं। पहले स्वस्थ नागरिक से ही निर्मित होता है समृद्ध समाज। साथियों, कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। वास्तव में किसी देश या समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसके स्वस्थ नागरिक होते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, तभी वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में सार्थक योगदान दे पाता है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, स्वच्छता और समय समय पर स्वास्थ्य जांच अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही योग, ध्यान और सकारात्मक सोच मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाते हैं। आइए हम सभी संकल्प लें कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि जब हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी हमारा समाज समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बनेगा। आइए साथियों, इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं भेंट वार्ता। संचारी रोग एवं दंत रोग नियंत्रण कार्यक्रम विषय पर श्री राजीव कुमार गुप्ता, पूर्व जिला मलेरिया अधिकारी से अमरदीप भास्कर की बातचीत। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।

0: बताओ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में अपन को स्वास्थ्य की देखभाल जो है बढ़िया तरीके से करना है, और बरसात में तमाम तरह के ऐसे जो रोग हैं, बीमारियां हैं, वो पनप जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। संचारी रोग एवं दस्त रोग नियंत्रण कार्यक्रम इस विषय पर जानकारी के लिए आमंत्रित किया है श्री राजीव कुमार गुप्ता जी को, जो जिला मलेरिया अधिकारी झांसी हैं। तो राजीव कुमार जी, आपका हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से और आकाशवाणी झांसी की तरफ से आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में संचारी रोग ज्यादा बढ़ते हैं, और संचारी रोग से हमारा जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, तरह तरह की समस्याएं हमें हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप बताएं, संचारी रोग है क्या?
1: सभी श्रोताओं को धन्यवाद। संचारी रोग मच्छर के काटने से, अशुद्ध जल के प्रयोग से और खुले में शौच करने से मक्खियां संचारी रोगों को फैलाती हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर जैसे रोग फैलते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि बरसात के सीजन में मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं और मच्छर अधिक पैदा होते हैं। ये मच्छर इन संचारी रोगों को फैलाते हैं। दूसरा, जो दस्त रोग बच्चों में अधिक होता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, ये पानी जो अशुद्ध होता है उसके पीने से, और ये बच्चे यदि खुले में शौच करते हैं उनके ऊपर मक्खियां बैठती हैं और ये मक्खियां दूसरे लोगों तक ये बीमारियां फैलाती हैं।
0: जी
1: तो मेन रूप से मच्छर और मक्खी इसमें बहुत अधिक होती हैं। जिस घर में मच्छर मक्खी, समझो बीमारी पक्की।
0: जी
1: तो इसमें हमें सावधानी की जरूरत है, क्योंकि मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं। हम अपने घर के अंदर पानी को ढककर रखें और 1 सप्ताह में हम घर के अंदर जो कूलर है, टंकी है, इनके पानी को हम खाली कर दें, उनको सुखा दें, उसके बाद दोबारा पानी रखा जाए। क्योंकि 1 सप्ताह में मच्छर का जो अंडा है वो लार्वा बन जाता है, जिससे मच्छर बढ़ जाते हैं। तो यदि हम 1 सप्ताह में खाली कर देंगे तो ये मच्छर की जो वृद्धि है वो नहीं होगी। और इसीलिए कहा गया है, हर रविवार मच्छर पर वार, लार्वा का संहार। तो यदि हम रविवार के दिन ये निश्चित कर लें कि हमें अपने घर के अंदर पानी की टंकी, कूलर, इसको खाली करना है, उसके बाद पानी भरना है, तो हम मच्छर को नियंत्रित करेंगे और ये रोग हमको नहीं होंगे। साथ ही अगस्त से लेकर के नवंबर तक डेंगू का रोग फैलता है, और डेंगू का जो फैलाने वाला मच्छर एडीज, जो दिन में ही काटता है,
0: जी
1: इसलिए हम फुल आस्तीन के कपड़े पहने और जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जूते मोजे पहना करके भेजें, जिससे कि दिन में ये मच्छर काटने ना पाए और हम डेंगू रोग से बच सकते हैं। रात में हम मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिससे कि मच्छर हमको काटने ना पाए। यदि फिर भी हमें यदि किसी तरह का बुखार आ जाता है, शरीर में जोड़ों में दर्द होता है और शरीर पर लाल रंग के दाने आ जाते हैं, अत्यधिक घबराहट होती है, तो डेंगू हो सकता है। इसके लिए हम खून की जांच मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सालय झांसी में कराएं, और वहां पर जांच होने पर अगर डेंगू निकलता है तो उसका उपचार हो जाएगा और रोगी स्वस्थ हो जाएगा।
0: जी राजीव कुमार जी, आपने श्रोताओं को संचारी रोग क्या है इस बारे में बताया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बरसात में जो मच्छर के लार्वा हैं वो कूलर की टंकी में या जो पुराने टायर हैं उनमें पनप जाते हैं, तो कैसे पता करें कि इसमें मच्छर के लार्वा है या नहीं है, तो पहचान के लिए वो क्या करें?
1: इसमें आप देखेंगे पानी में नीचे की तरफ बहुत छोटे छोटे कीड़े चलते हुए नजर आएंगे और ये सफेद रंग के होंगे, और इसके अलावा ये कॉर्नर पर ज्यादातर वो इकट्ठे रहते हैं। यदि हम उन्हें टॉर्च की रोशनी डाल दें तो ये दूर भागते हैं, तो इससे ये पता लग जाता है।

0: कि ये लार्वा है और इनको पानी से हम हटा दें, पानी फैला देंगे, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये अपने आप रुक जाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्त रोको अभियान, ये चलाया जा रहा है। और इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग सहित इसमें मिल करके कार्य कर रहे हैं। हमारे घर घर भ्रमण के लिए एक टीम बनाई गई है, ये घर घर जा रही हैं और वहां पर पूछती हैं कि घर में कोई बुखार तो नहीं है, यदि कोई बुखार का रोगी है तो उसकी जांच के लिए वो प्रेरित करती हैं। साथ ही दस्त रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत यदि किसी के घर में 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको एक ORS का पैकेट उनके द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है। यदि किसी बच्चे को डायरिया है, दस्त है, तो उसके लिए हमें 2 ORS के पैकेट और 14 दिन के लिए जिंक टेबलेट दी जा रही है
1: जी।
0: 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चे को आधी टेबलेट दूध में पीस करके 14 दिन तक देनी है और 6 माह से ऊपर है तो उसको 1 टेबलेट प्रतिदिन पानी के साथ 14 दिन दी जानी है, जिससे ये दस्त जो है वो रुक जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे बच्चे
1: जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार भी फैल जाता है, तो मलेरिया किस प्रकार फैलता है, कौन से मच्छर के काटने से फैलता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या है?
0: जी, मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया में शुरू में सर्दी दे करके बुखार आता है और ये बुखार 1 दिन छोड़ करके आता है। जब सर्दी लगती है तो हम रजाई या कंबल ओढ़ते हैं, उसके बाद पसीना निकलता है और फिर ये लगने लगता कि हम अच्छे हो गए, लेकिन 1 दिन के बाद फिर बुखार आता है और उल्टी भी आती है, जी मिचलाता है, पेट में दर्द होता है। तो ये हमारे मलेरिया के लक्षण हैं। इसके लिए हम अपने खून की जांच कराएं, प्रत्येक सरकारी चिकित्सालय में मलेरिया की जांच निशुल्क होती है और यदि मलेरिया निकलता है तो 14 दिन का उपचार निशुल्क दिया जाता है, इससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। और डेंगू का जो बुखार है उसमें जोड़ों में दर्द होता है तो अक्सर लोग दर्द की दवा ले लेते हैं, दर्द की दवा नहीं लेनी है, केवल बुखार उतारने की पैरासीटामोल दवा लेनी है और उसके बाद हम जांच कराएं और उपचार लें। यदि हम दर्द की दवा लेते हैं तो हमारा खून पतला हो जाता है और इसमें खून बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हमें दर्द की दवा ब्रूफेन, कार्टिसोन, ये दवाएं बिल्कुल नहीं लेनी है और हमें मतलब ये लिक्विड चीजें हैं ये हमको लेनी है, चाहे नारियल का पानी हुआ, ORS पैकेट है और जो हमारे खिचड़ी है, दलिया है, ये चीज हमको जो है वो लेनी है और हमें ये ठोस चीजें ये नहीं खानी है
1: जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मलेरिया में जैसे कि 1 दिन छोड़कर 1 दिन बुखार आता है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भ्रांतियां हैं कि ये झाड़ फूंक टोना टोटका से खत्म हो जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इसमें कोई भी झाड़ फूंक नहीं करानी चाहिए, अगर बुखार है तो आप उसकी जांच कराएं और जांच के बाद उसका उपचार हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये निशुल्क उपलब्ध है। साथ ही नीम हकीम, इनसे आप बचें और सरकारी सेवाओं का आप लाभ प्राप्त करें।
1: आपको किसी झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना है और पूरा उपचार आपको लेना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस समय बरसात के मौसम में दस्त रोग ज्यादातर देखने में आ रहा है और दस्त रोग के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं जिससे दस्त रोग हो जाता है?
0: दस्त रोग अशुद्ध पेयजल के प्रयोग से होता है। इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि इस समय हम पानी को उबाल करके ठंडा कर लें और उसको हम पिए, साथ ही 20 लीटर पानी में 1 क्लोरीन की गोली डाल दें, आधा घंटे के बाद वो पानी पीने लायक हो जाता है। तो हम शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें जिससे हम दस्त से बच सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, अगर छोटा बच्चा है तो माँ का दूध उसको देते रहें, साथ ही उसको ORS का घोल जो आपको

0: निशुल्क दिया जा रहा है। एक लीटर पानी हम उबाल लें, उसको ठंडा कर लें, ORS का पैकेट उसमें डाल दें और ये पर्याप्त जो घोल है वो 24 घंटे के लिए पर्याप्त होता है, तो इससे हमें पानी की कमी नहीं हो पाएगी। यदि बहुत ज़्यादा बच्चे को सीरियस अवस्था है तो हम उसको चिकित्सालय में ले जाएं और वहाँ पर उपचार कराएं।
1: जी, आपने बताया कि जो संक्रमित जल है, दूषित जल है, उसके द्वारा जो दस्त रोग है वो फैलता है और दस्त रोग में आपको बिल्कुल पूरा पूरा उपचार लेना है। अगर पानी की कमी हो रही है या और ज़्यादा समस्या हो रही है तो आप उपचार केंद्र जाएं और पूरा पूरा उपचार लें। राजीव कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संचारी रोग जो बरसात के मौसम में फैल रहे हैं, चाहे वो दस्त रोग हो या डेंगू हो या मलेरिया हो, तो इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा रोकथाम के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि आम लोग जो हैं वो जागरूक हो सकें और संचारी रोगों से बच सकें।
0: अभी सरकार के द्वारा एक संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्त रोको अभियान ये चलाया जा रहा है। बाजार में बिकने वाले सड़े गले फल जो कि बीमारी का कारण है
1: जी,
0: उनकी चेकिंग की जा रही है और उनको नष्ट किया जा रहा है। साथ ही आइसक्रीम है, दूध है, इनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं, जिसकी जांच में अगर कोई खराबी होती है तो उनको दंडित भी किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग, हमारे जो स्कूल में नोडल टीचर बनाए गए हैं, ये बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि हम संचारी रोगों से कैसे बच सकते हैं। जल संस्थान के द्वारा जगह जगह पानी का सैंपल लेकर के जांच की जा रही है। नगर निगम द्वारा नालियों की सफाई की जा रही है। इसी के क्रम में जो पशुपालन विभाग है ये भी पशुपालकों को ये संवेदीकरण कर रहे हैं कि पशुओं के द्वारा भी एक बीमारी होती है लेप्टोस्पायरोसिस। ये लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी पशुओं के मूत्र से फैलती है, तो पशुपालन विभाग द्वारा शिक्षित किया जा रहा है। जो कृषि रक्षा विभाग द्वारा स्क्रब टाइफस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है। तो इसी क्रम में हमारी जो आंगनबाड़ी है और आशा है, इनकी जो टीम बन करके घर घर जा रही है, भ्रमण करके जानकारी कर रही है और वहां पर ORS का पैकेट और जिंक टैबलेट दी जा रही है जिन बच्चों में डायरिया के लक्षण हैं, और ये बीमारी नियंत्रित हो जाएगी। इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है, दूर रहे संचारी रोग, यदि मिले सभी का सहयोग।
1: बिल्कुल, संचारी रोग जो है पालतू पशुओं से भी फैल सकते हैं, चूहों से भी फैल सकते हैं, इस बारे में आपने बताया। अगर आपको कोई भी संचारी रोग हो गया है तो रोकथाम के उपाय पूरे करने हैं, साथ ही साथ उपचार भी पूरा पूरा लेना है। अस्पताल जाएं, पूरी जांच करवाएं, उसके बाद जितने दिन की दवाई डॉक्टर द्वारा बताई जाए पूरा उपचार आपको लेना है। श्री राजीव कुमार गुप्ता जी, आपने संचारी रोग एवं दस्त रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद।
2: साथियों, विविधा कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए थे भेंटवार्ता, विषय था संचारी रोग एवं दंत रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विषय पर श्री राजीव कुमार गुप्ता, पूर्व जिला मलेरिया अधिकारी से अमरदीप भास्कर की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, विविधा कार्यक्रम जो नाम पड़ा है उसका मतलब यही है कि हम आपसे विविध विषयों पर बातचीत करें। अब हम अगला विषय जो चर्चा का है वो है कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक जिनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए बना रहेगा, यथावत रहेगा। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब संवेदनशील अभिनय और उत्कृष्ट निर्देशन की बात होती है तो गुरुदत्त का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 9 जुलाई 1925 को हुआ था। गुरुदत्त ने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। उनकी फिल्मों में मानवीय भावनाओं, प्रेम, संघर्ष और समाज

की सच्चाइयों का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है। उनकी फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। गुरुदत्त का रचनात्मक दृष्टिकोण और कला के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। साथियों, आइए अब आपको सुनवाते हैं एक गीत शर्मबंधु के स्वर में।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे शर्मा बंधु के स्वर में ये गीत। और हम अब चर्चा का अगला विषय लेकर आए हैं, जनसंख्या का संतुलन खुशहाली का विकल्प। साथियों, बिल्कुल सही बात है, एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में जनसंख्या का संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब परिवार छोटा और सुव्यवस्थित होता है तो बच्चों को बेहतर शिक्षा, उचित पोषण, अच्छा भोजन, अच्छी देखभाल और अच्छा स्वास्थ्य हम प्रदान कर सकते हैं। उज्जवल भविष्य के उन बच्चों को अधिक अवसर मिलते हैं जहां परिवार सीमित होता है। परिवार नियोजन अपनाकर हम न केवल अपने परिवार का जीवन स्तर बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है बीत।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, आज विविधा कार्यक्रम में हमने आपसे विविध विषयों पर चर्चा की। अब आज हमें अपनी दोस्त उषा को यहीं पर दीजिए इजाजत और लीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम फिर से उपस्थित होंगे कार्यक्रम विविधा लेकर।
2: विविधा।

0: 내비다.
1: अभी साथी सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

0: किसान माणी कार्य के अनुसार विवाह सभी किसान पंच भैया स्वीकारो संतोष पाल और
1: प्रियंका की नमस्कार।
0: हाँ तो किसान भैया रहो कैसी हो, आशा करा था अपन सब जने नोनी हुई हो। अब तो भैया आ रहो देखो बरसात भी शुरू हो गई खूब और अपन अपनी खेती बाड़ी में लगी। ऐसे में अपन है देखो अपने पशुओं को भी ख्याल रखने और उनके खान पान की व्यवस्था करने।
1: बिल्कुल भैया, और देखो अपने जो किसान भैया आए हैं इनके लाने में क्या करें कि जो अपने किसान भैया आ रहे हैं पशुपालन करत हैं तो बरसात की मौसम में पशुपालन करे वालों को उनके खान पान को सेहत को बहुत ध्यान रखने पड़त है। कैसे बरसात की वजह से जैसे अपन देख रहे हैं कि नई नई घास हो रही और नमी बहुत हो रही, तो जो अपने पशु पालक भैया है बेजास और चारों काट के लिए आ रहे हैं अपने बच्चे बोना बोई दे रहे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कैसे कि ऐसे में जो चारों है वहां में नमी बहुत ज्यादा आ रही है और नमी की वजह से चारों भी खराब हो जा। साथ ही साथ हरी घास जल्दी पनपत है लेकिन जहाँ में पानी ज्यादा होते है और ताकत कम होते है, अगर अकेली अपन जो हरी घास खवात है तो पशु जो है पत्थरों गोबर कलर लगा जैसे अपन कनर के दस्त कलर लगाते हैं और ऐसे में पशु जो है बीमार भी हो जाते हैं। पशुओं का जब भी अपन खाना दें तो कम से कम 50% शुभ चारों और 50% जो है हरी रो चारों मिला के अपन का पशुओं का दे रहे हैं, यानी आधो चारों मिला के दें जैसे अपने जो पशुओं का पूरा हरो चारों नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ कैसे कि अगर अपन जो चारों खवाते हैं और अगर जैसे पेट में गैस भी बनने लगा थे वो पशु बीमार भी हो जाते हैं। साथ ही दूध वाले जानवर की ताकत बनाए रखने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है, जैसे गाय भैंस है उनका दाना देने हैं और जो दूध देते हैं दूध देने वाली गाय भैंस है 300 ग्राम और भैंस का 400 ग्राम दाना मिश्रण मिला के अपना जरूर देने हैं। कैसे जैव उनके लाने बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मेलन मिक्सचर रोज मिलाओ, साथ ही मिनरल वो भी अपन को रोज देने हैं और अपने जो डोर बच्चे हैं उनके खान पान को बिल्कुल ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ अपन ध्यान रखें कि बीमारी से बचावे के लाने हरे चारे के नीचे जो घोंगे चिपके रहते हैं तो इन खा के पशु जो है अपने बीमार भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखें कि जब भी अपने जो बहने हैं चारों काट के ले आती हैं तो उन्हें ठीक से रख लें फटकार दें। साथ ही साथ अपन खा तुरंत ही हरों चारों के लो नहीं खवाने हैं, सूखो भूसा मिला के सानी मिला के भी दे सकते हैं और उनके साथ साथ संतुलित आहार भी अपन खा देने हैं। और देखो ये मौसम में पेट में कीड़ा सोई हो जाते हैं तो बरसात शुरू होने से पहले ही जो है अपने पशुओं का कीटनाशक दवाई जरूर

अपन डॉक्टर भैया की सलाह से जरूर पिलाएं। तो पशु चिकित्सालय जाए और उनसे सलाह लेवे, तबई जो है अपन खा अपने जो पशु हैं उनका जो है दवाई अपन खा पिवाने हैं। और भैया रो देखो अपन और भी एक बता अपन और एक बात बता दें कि बरसात चल रही है तो ऐसे में देखो अपन देखा थे कि कीड़ा पटीरा सोई बहुत निकलत हैं और कीड़ा पटीरा निकलत हैं ज्यादातर, तो उनके बचाव के लाने अपन का ध्यान करने हैं कि कीड़ा पटीरा से कैसे बचाव करें। तो चौमासे में अगर अपन कहीं भी जात हैं तो विशेष तौर पे अपने खा लंबे जूता पहनने हैं या रात के अंधेरे उजेरे में ना जाएं, उजेला करके ही जाएं। साथ ही साथ जब अपन जाएं तो देखें कि अपने जैसे कभी भी अपने अनजाने में ही जूता चप्पल ऐसे बिना देखे पहन ले तो ऐसे बिल्कुल ना पहने, या अपन देख रहे हैं कि खेतन में निकल रहे तो अपन जो है लठिया लेके या डंडे से लेके ठोक पीट के जाए, या फिर उजेला कर लें, लालटेन है या टॉर्च है, मोबाइल की रोशनी है, किसी भी प्रकार से जाएं लेकिन अंधेरे में बिल्कुल ना जाएं। साथ ही साथ देखो अपन देखा थे कि केवल गांव में ही नहीं कीड़ा पटीरा जैसी चीजें शहर में भी बहुत जल्द हो जाती हैं, कहीं भी आ जाते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपन खां जो है बरसात के मौसम में ऐसे कहीं बिल्कुल निकलने नहीं है। साथ ही साथ जब भी अपन जाएं तो सुरक्षित रहें और आगे बत का और करें, लेकिन कहना पहले सुन ले जाए जे कछु संदेश है।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ तो किसान भैया, आज है गुरुवार, आज के दिन हम अपन मन के सुनवाते फोन इन कार्यक्रम जो अपन के फोन कॉल पे आधारित रहते, तो अपन उन्हें सुनो। हेलो किसान कार्यक्रम है और हम सुने।

0: किसान भैयारो
1: नमस्कार। हाँ तो किसान भैयारो देखो आज है फोन इन कार्यक्रम, अपन लेके आते हैं हेलो किसान। और ई फोन इन कार्यक्रम में अपन देखो किसान भैया से बातचीत कराते हैं उनके संबंधित विषय का लेके। तो आज को विषय है बरसात के मौसम में पशुओं की बीमारी से बचाव एवं टीकाकरण।
0: और आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंकिता रोतेला, पशु वैज्ञानिक सहायक प्राध्यापक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से पधारे
1: और एक उनसे संपर्क करवे के लाने हमारे स्टूडियो में फोन करवे के लाने 2 से 2:30 बजे के बीच में अपन जो है संपर्क कर सका थे। जोन भी किसान भैया ने अपने सवाल को जवाब ले वो चाहे
0: तो ई के लाने अपन फोन नंबर जल्दी से लिख लो 0510-232-0068। तो ई पे अपन फोन करके सीधे अपने सवाल पूछ सका। किसान भैयारो नमस्कार। हाँ तो भैयारो देखो अब अपन देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र में देखो बारिश भी झमाझम हो रही खूब और अपने खेतन में हरियाली भी आ गई। ऐसे में कहा होता है कि अपने जो पशुधन है उनके खावी पीवे की व्यवस्था हो जाता है, यानी कि हरे चारे की व्यवस्था। ई मौसम के आवे से पहले अपन है का कछु सावधानी रखने जिसे अपने पशु स्वस्थ रहे और अपन उनसे अच्छो दुग्ध उत्पादन ले सके। तो इन सब बातन पे जानकारी देवे के लाने बतकाव करवे के लाने आज हमने हेलो किसान कार्यक्रम में आमंत्रित करो है पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अंकिता रोतेला जी से, जी सहायक प्राध्यापक हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। डॉक्टर अंकिता जी आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है भैया, नमस्कार।
3: जय राम जी की साहब। जय राम जी की।
0: जय राम जी की।

0: कहाँ से बोल रहे हैं भैया? कौन साहब बोल रहे हैं आप?
1: साहब महेश बोल रहे हैं, रैकवार जी, और ग्राम पोहा से बोल रहे हैं, बरुआ सागर के पास पड़ता है।
0: जी महेश जी, स्वागत है आपका। और कैसे हैं? अपने यहाँ कैसा मौसम है आजकल?
1: हाँ भाई, हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आज तो नहीं हुई, लेकिन कल तो सारा दिन हुई है।
0: जी, तो आज के कार्यक्रम का विषय ना?
1: नहीं सर, हमको नहीं मालूम है सर।
0: हाँ, तो महेश रेखवार जी, आज हम ऐसे ही विषय लेकर आए हैं, बरसात के मौसम में पशुओं का बीमारियों से बचाव और टीकाकरण। क्योंकि बरसात का मौसम आ गया, तो ऐसे में अपने जो पशुधन है उनमें कई तरह की रोग बीमारियां आ जाती। तो
1: हाँ, ये खुर
0: हाँ, अपने
1: बकरा बकरा। हाँ
0: हाँ तो अपने बीच में आज हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अंकिता रौतेला जी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से पधारी हैं। तो अपन सीधी इनसे अपनी समस्या को समाधान पा सकते।
1: ये पूछ सकते, कछु पशु प्रेग्नेंट है, और कछु पशु प्रेग्नेंट है तो इनको प्रेग्नेंट को टीका लगवा जा सकत के बड़ा प्रेग्नेंट रखो टीका लगवा जा सकत।
0: जी अंकिता जी, हमारे पशुपालक भैया पूछो चाह रहे कि उनके जो पशु हैं वे गर्भ से हैं, तो वे सोचत के हमारे जो पशु ग्यावन हैं तो उनमें टीकाकरण करा दें या ना कराएं?
2: जी नमस्कार, मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहूंगी कि आपके वहाँ जो नजदीकी आपका पशु चिकित्सालय है, वहाँ पे सभी टीकाकरण की समय सारिणी वहाँ पे उपलब्ध रहती है, और सारे टीका जो भी हैं वो मुफ्त में हैं। तो आपके वहाँ ऐसा होता है, जो गाभिन पशु है उनको पहले के समय, जैसे इस समय वर्षा के ऋतु के समय पे आपकी कुछ बीमारियां, जैसे आपने कहा कि आपके जानकारी है खुरपका मुंहपका के बारे में, ऐसे ही गलघोंटू और आपका एक टंगिया या लंगड़ा बुखार, ये सारी बीमारियों का वर्ष में एक बारी टीकाकरण कराना जरूरी होता है, जो कि आपको मानसून या वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले कराना होता है। तो इस बारे में गाभिन पशुओं को भी टीकाकरण कराया जा सकता है, लेकिन आपको ये वो आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय में ही जाके उनसे ही करवाना है।
1: और साहब, जैसे एक समस्या और है, जैसे ये अपनी बकरियां पाले ने, मतलब वो पेट पेट में लेटरिंग करके, मतलब पटे ने बोला, मतलब गोचे पड़ जाता अंदर।
0: हाँ।
1: उनके लिए कौन सी दवाई है जो हम उन्हें पिला के सही कर सकते?
2: तो ये भी मैं आपको फिर से यही बताऊंगी, इसका भी बहुत ज्यादा ये है कि टीकाकरण ही इसका उपचार है। तो जिसे हम डिवर्मिंग भी और टीकाकरण बोलते हैं, जो कि वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले और वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद करवानी है, तो ये भी आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय में मुफ्त में उपलब्ध रहती है। ये इसलिए जरूरी है कि आप अभी हम आपको अगर दवाइयों के नाम बता देंगे तो ये ऐसा नहीं है, ये उनके शारीरिक वजन के अनुसार उसके अनुपात में ये दी जानी जानी चाहिए। इसीलिए आपको पैरावेट और आपके नजदीकी पशु चिकित्सालय से ही लेनी है ये दवाइयाँ, बहुत सारी। जैसे ये है एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल आ जाती है। अब इसमें कुछ बकरियां आपकी गाभिन होंगी तो उसके लिए अलग आपकी टीकाकरण होता है, डिवर्मर होता है, तो ये भी आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से ही लेना है।
1: जानकारी देने के लिए
0: जी, क्योंकि क्या होता है कि स्थिति अपन अपने पशु चिकित्सालय है जो अपने पास का, वहाँ जाकर संपर्क करेंगे तो वे पूरी स्थिति जानेंगे कि अपना जो पशु ग्यावन है वो कितनी समय का हो चुका है, उन्हें टीका लगाना उचित है या नहीं है, किस तरह की उनमें बीमारी की रोकथाम की जा सकती है जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके।
1: जैसे 1962 सेवा चल रही है 1962, ये भी तो लगा सकते।
0: हाँ, सरकार की तरफ से जो आप देख रहे पशु चिकित्सा इकाई, अपनी जो जैसे अपनी एम्बुलेंस आती है अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए तुरंत उपस्थित
1: है। और जैसे कोई किसान हमारी को नहीं हो पता तो उनको उनको बता दे कि वो नंबर है 1962, वो लगाना है।
0: आप बहुत जागरूक है पशुपालक और एक किसान भैया हैं। और अपन अपने पशुओं के लाने हरे चारे की भी व्यवस्था करत का?
1: हाँ, जैसे बाजरा आदि है जी, सर्दी मतलब गर्मियों के समय में बाजरा आदि लगा देते थे, और अभी तो जैसे हरी हरा चारा पानी हो जाता है तो हो ही जाता है।
0: जी महेश जी, और कुछ पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब का से आप?
1: नहीं नहीं साहब, और कोई नहीं, नहीं इतनी जानकारी चाहिए थी कि जी मेरी बकरियां गाय यहीं पाले और भैंस गाय हैं, तो इनकी जानकारी उन्होंने दे दी हमको, बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी महेश जी, आप हमसे जुड़े, आपसे बात करके हमें भी बहुत नोनो लग रहा हूँ। तो आशा करत भविष्य में भी आप देखो फोन के माध्यम से हमसे जुड़े रहो और अपनी खेती किसानी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद
0: अंकिता जी। एक और श्रोता भैया हमसे जुड़ गए तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आपको स्वागत है, नमस्कार भैया। हेलो।
3: हाँ सर नमस्कार।
0: हाँ जी, आप अपना नाम पता बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: सर आज क्या है,
0: आज गुरुवार है और आज के दिन हमारा जो हेलो किसान कार्यक्रम जाता है उसका आज के हमने विषय रखा है बरसात के मौसम में पशुओं का बीमारियों से बचाव और टीकाकरण।
3: हाँ सर, मैं ग्राम चटहरी तहसील नरवर जिला से आपका भाई प्रमोद कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ सर।
0: जी शर्मा जी, आपका स्वागत है। और अपने यहाँ कैसा है मौसम आजकल?
3: आजकल सर अभी बारिश हो रही थी लेकिन

0: आज बदल साफ हो चुके हैं।
1: हाँ
0: हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ये बरसात का इंतजार कर रहे हैं, अभी बहुत छोटी है तो धान लगाने की तैयारी में है अभी।
1: जी,
0: सर
1: ऐसे में अपन अपने पशुओं को देखो चराने भी ले जाते हैं क्या बाहर?
0: चराने भी ले जाते हैं और टीकाकरण भी करवा लिया था मैंने,
1: अच्छा
0: तो और करवाना है क्या सर? ये जानकारी लेना चाहूंगा मैं डॉक्टर साहब से।
1: जी अंकिता जी।
2: जी जी नमस्कार, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी आप बोल रहे हैं कि आपने टीकाकरण करवा लिया है, तो ये आपने अभी कौन से महीने में करवाया है?
0: दीदी मैंने अगले महीने करवाया था, जून में।
2: जून में
0: करा, जुलाई चल रही है।
2: हाँ जी हाँ जी, तो आपने ये अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से ही करवाया होगा ना?
0: हाँ,
2: तो वो उन्होंने जैसे अभी वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ना, मुख्यतः अगर आपके पास गाय और भैंस है या बकरी भी गाय है, तो गाय में ना जो आपका गलघोटू, मुंह पका, खुरपका, गलघोटू और एक टंगिया या लंगड़ा बुखार या हम पड़सूजा नामक बीमारी बोलते हैं, उसके लिए टीका लगते हैं। तो वो मई से जून, आप जैसे बोल रहे हैं आपने पिछले महीने जून में करवा लिया है, तो ये बहुत सही बात है। जैसे गलघोटू और ये सब आजकल है, तीनों के एक ही साथ एक ही टीके में तीनों बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली टीकाकरण उपलब्ध है। तो आप जैसे बोल रहे हैं तो शायद आपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से वही टीका लगाया होगा, है ना?
0: हाँ,
2: जो तीनों बीमारियों से आपके जानवरों की रक्षा कर सकता है। तो नहीं, अगर आपने अभी लगा लिया है तो आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ष में एक बार लगाते हैं। आपका पशु कितने वर्ष का है या कितने महीने आयु का है?
0: वर्ष का तो जैसे मैं लूसम कही, एक तो है 5 बरस की।
2: 5 बरस की है, मतलब बड़ी गाय है।
0: हाँ, बहुत बड़ी गाय है। और दो गाय वसूली है, मतलब 10 साल की।
2: हाँ जी हाँ जी, तो आपको ना ये वाला है, साल में एक बार ही टीका लगाना है। ये आपका जो खुरपका मुंहपका होता है, ये साल में 2 बार लगता है।
0: और दीदी ज्ञापने मतलब ज्ञापन गाय है तो उनको कोई परेशानी तो नहीं होगी?
2: नहीं नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं। आपने आप जैसा बता रहे हैं, आपने पशु चिकित्सालय से ही, पशु चिकित्सक की निगरानी में ही ये लगवाया है, तो उनको इस बारे में पूरी जानकारी होती है। अगर उन्होंने टीका लगाया है तो कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है।
0: अच्छा, थैंक यू दीदी। मैं आपका भाई प्रमोद शर्मा बात कर रहा था दीदी।
2: हाँ जी हाँ जी
1: जी शर्मा जी, आशा करत के अपन अपने सवालन को जवाब पाके संतुष्ट हुई हो?
0: सर बिल्कुल।
1: हाँ, अच्छी तरह से अपने पशुधन को देखभाल करो और उनसे अच्छे उत्पादन लेके अपनी जो घर की आय है वह बढ़ा सको।
0: अच्छा, थैंक यू सर
1: जी। नमस्कार भैया।
0: नमस्कार।
1: हेलो किसान कार्यक्रम में आपको स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार
1: जी साहब, कौन बोल रहे हैं आप?
3: जी सर, मैं यशवंत सिंह यादव फैमिली।
1: जी यादव जी, आपका स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। और
3: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। अच्छा, आज के जो कार्यक्रम को विषय है वो हमने रखो बरसात के मौसम में पशुओं का बीमारियों से बचाव और टीकाकरण। और हमारे बीच में उपस्थित हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से आई पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अंकिता रौतेला जी। तो अपन अपने पशुओं से संबंधित कोनो भी समस्या को समाधान उनसे पा सकत। तो पशुपालन में अपन कौन सी समस्या आ रही, कौन कौन से पशु पाले हैं अपन?
3: गाय पाले हैं।
1: अच्छा, तो गाय कौन सी नस्ल की पाले हैं आप?
3: देसी है।
1: अच्छा देसी है, तो इसमें अपन कुछ समस्या आ रही बीमारी या टीकाकरण से संबंधित कोनो भी सवाल? हाँ, तो आप पूछो।
3: डॉक्टर नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार।
3: डॉक्टर जी, हमारी गाय में की किल्ली लगी है, किल्ली नहीं छूट रही, काफी दवाई करवा ली है।
2: अच्छा, आपने क्या इंजेक्शन वाला लगाया था या उसको खिलाया वाली दवाई लगाई थी?
3: इंजेक्शन वाला।
2: तो इंजेक्शन वाला आपने बरसात से पहले लगाया था?
3: हाँ।
2: तो उसके बाद आपको 15 दिन बाद से, 15 से 20 दिन बाद या महीने भर बाद उसका बूस्टर डोज लगाना होता है एक बार और।
3: जी सर।
2: हाँ जी, वो आप लगवा लीजिए। या अगर इंजेक्शन वाला ही आपने क्या लगाया था, उसका नाम आपको पता है?
3: नाम को मालूम नहीं,
2: डॉक्टर साहब ने लगाई होगी। तो हो सकता है कि आइवरमेक्टिन लगाई हो, तो आप उसको रिपीट करवा लीजिएगा। ये बाहर से किलनियाँ लगी हैं, वैसे तो वो निकल जानी चाहिए इंजेक्शन के माध्यम से। अगर नहीं होता है तो ऊपर से जो सॉल्यूशन आते हैं आप डॉक्टर साहब से ही ले सकते हैं, बाहर स्किन में उसके लगा सकते हैं। और उसका आपको एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जब किलनियाँ जो है ना एक जानवर से दूसरे पशु में सरती हैं, तो आपको जो दीवारों में या उसके फ्लोर में जमीन में क्रैक होते हैं, है ना, छेद वेद हो जाता है, उनको दरारें जो होती हैं वो भर दीजिए। और उस जमीन को भी आप जो कीटनाशक दवाई के द्वारा साफ करेंगे फर्श को, तो दीवालों के जो दरारें हैं, फर्श में जो दरारें हैं, उसमें भी आपको ये साइपरमेथ्रिन और डेल्टा मेथ्रिन नामक दवाइयां आती हैं। आप किसी भी पशु चिकित्सालय में उनसे भी ले सकते हैं, उनसे पूछ के लिखवा सकते हैं, उनसे भी आप फर्श की सफाई कर लीजिए। उससे भी क्या होता है, कई बार किलनी जो आपकी छूट गई होंगी दवाई के, जब आपने इंजेक्शन लगाया होगा वो जानवर से छूट के क्रैक में रह जाती है, फिर दोबारा जब दवाई का असर खत्म होता है वो दोबारा पशु में लग जाती है, तो इस वजह से वो बार बार हो रही है। तो जिस स्थान पे आप पशु रखते हैं उसको भी साफ और स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है।
3: अच्छा,
1: जी यादव, और कुछ पूछ वो चाहते हैं क्या?
3: नहीं सर, धन्यवाद
1: जी, नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमसे जुड़ गए तो उनसे भी पूछत का उनकी समस्या है।
2: हाँ जी,
1: हेलो किसान कार्यक्रम में आपको स्वागत है। नमस्कार।
0: हेलो
1: जी। हाँ जी, हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही क्या?
0: जी जी पहुंच रही। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आप कौन सा बोल रहे हैं पहले तो ये बताएं।
0: मैं एचआर गौतम महरौनी से बोल रहा हूँ सर।
1: अच्छा, कौन सा बोल रहे हैं आप?
0: एचआर गौतम।
2: हेलो,
0: आकाशवाणी झांसी लगाना फोन?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही लगा है आपका फोन जी। गौतम जी,
0: जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय जो पशुओं में टीका कार्ड लगाए करवाना है,
1: जी जी,
0: तो मुख्यतः कौन कौन से टीका कार्ड लगाए करवाए जाते हैं और वो कहाँ, मतलब अगर हम लगवाना चाहते हैं तो कहाँ कॉन्टेक्ट करें?
1: अच्छा जी, हमारे बीच में अंकिता जी उपस्थित हैं।
2: हाँ जी गौतम जी, इस समय आपके पास कौन से पशु हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़?
0: जी गाय है और का मतलब एक छोटा सा बच्चा है।
2: अच्छा गाय।
0: जी
2: तो अभी इस समय वर्षा ऋतु के दौरान ना, आपको वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही लगभग आपको, आप मान के चलिए अप्रैल से जून के भीतर में टीका लगवा लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसमें आपके सरकारी स्कीम के द्वारा नजदीकी पशु चिकित्सालय में टीका मुफ्त में भी उपलब्ध रहते हैं। सरकार जो योजनाएं चलाती है ना, वो टीका मुफ्त में देती है सारे पशुपालकों को, तो आप किसी भी नजदीकी चिकित्सालय में जाके लगा सकते हैं। तो उसमें क्या है, अब आपके पास जैसे आप बोल रहे हैं कि गाय है, तो वर्षा ऋतु में प्रमुख से गाय और भैंस, आपने भैंस भी है तो वो भी सेम ही है, उनके लिए दोनों में मुख्यतः वर्षा ऋतु में तीन बीमारियां प्रमुख होती हैं, जैसे आपने सुना होगा मुंहपका, खुरपका, और दूसरा आपका गलघोटू, तीसरा आपका एक टंगिया या लंगड़ा बुखार, या आपकी भाषा में उसे पड़सूजा बोलते हैं। तो इन तीन बीमारियों के लिए आपका क्या है, प्रतिवर्ष टीकाकरण होना जरूरी होता है। तो ये क्या होता है, जैसे आप बता रहे हैं आपकी एक छोटा बछिया भी है, तो उसमें जब वो 4 से 6 महीने का हो जाएगा तो उसमें पहला टीका तब लगेगा, जो छोटा बच्चा है आपका, है ना, 4 से 6 महीने के दौरान में पहला टीका आपका, ये चाहे यही तीनों बीमारियों के लिए सिंगल सिंगल एक एक टीका अलग अलग भी लग सकता है, और आजकल एक तीनों बीमारियों का एक साथ एक ही टीके में तीनों बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला टीका भी उपलब्ध है। तो आप छोटे बच्चे का, तो आप जब ये 4 से 6 महीने का हो जाएगा उसमें आप पहला टीकाकरण कराएंगे, और जो आप बता रहे हैं कि बड़ा आपका जो पशु है उसका आपने अभी तक करा लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं कराया है तो अभी भी आप नजदीकी पशु चिकित्सालय, किसी भी, जो भी आपके निकटतम पड़ता है, जो भी सबसे पास में पशु चिकित्सालय पड़ता है, वहां जाके उनसे या पैरावेट जो भी आपके होते हैं उनसे पूछ के आप टीकाकरण करवा सकते हैं।
0: तो उसमें मैम जैसे जो गाय देता है पशु, उसको कोई दिक्कत तो नहीं होती? उसको भी लगवा सकते हैं ना?
2: जो आप दोबारा बोलेंगे,
0: दूध दे रही है?
2: हाँ हाँ हाँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप लगवा सकते हैं।
3: हाँ तो डॉक्टर साहब, आप आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसे कि गला घोटू है या लंगड़ी बुखार है या बरसूजा है, ये जो रोग है अचानक से ये मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अपन देखते हैं स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अपने पशु जो है बीमार हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है?
2: इसका देखिए सबसे पहले ये कारण है कि इस समय पे बरसात के मौसम में जो आपका वातावरण है उसमें आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण मक्खी, मच्छर, किलनी और ये सारे जो होते हैं ये चीजों का एकदम से संख्या बढ़ने लग जाती है, और ये जो सारी चीजें हैं ना बहुत प्रमुख बीमारियों का वाहक होती है, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर होती है, ये कैरी करती है एक चीजों से फैलाने का काम करती है।
3: अच्छा,
2: इस वजह से ये हो जाती है, और इस समय जितने भी जीवाणु और विषाणु होते हैं वो बहुत तेजी संख्या में बढ़ते हैं।
3: जैसे कि डॉक्टर साहब, ये जो रोग फैलते हैं अपने जानवरों में, तो इनकी शुरुआती लक्षण कैसे कैसे पता करें कि हमारा पशु जो है इस रोग की चपेट में है?
2: हाँ जी, तो इसमें ना जैसे क्या होता है कि एकदम से, जैसे हमने बात करते हैं इसमें खुरपका मुंहपका के बारे में बात करते हैं पहली बीमारी में, इसमें क्या होता है पहला लक्षण जैसे क्या दिखेगा आपको, ये एकदम से ध्यान में नहीं आते, बट इसमें क्या है आपको सावधानी बरतनी होती है, टीकाकरण ही आपका बचाव है, इलाज इनका कुछ नहीं है, इलाज इनका लक्षणों के अनुसार ही होगा, है ना। अगर हम बोलेंगे तो बीमारी का कोई ऐसा कि ऐसा ना हो कि कोई एक टीका लगा दो या कोई दवाई दे दो और पूरी बीमार ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें बचाव करना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, लक्षण हम लोग जब बोलते हैं पहला क्या है, जैसे इसमें खुरपका मुंहपका कौन से वाले जानवरों में होगी, जो जानवर में खुर होते हैं, यानी विभक्त खुर, यानी दो भागों में विभाजित या फटे हुए खुर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर, तो इनमें क्या होता है इनके बीचों में, खुरों के बीच में छोटे छोटे छाले होने लगते हैं, पर ये छोटे छोटे छाले ऐसे मुंह में भी होने लगते हैं, क्योंकि देखिए नाम ही बोल रहे हैं ना मुंहपका और खुरपका, तो इनके बीच में जो दो खुरों के बीच में ऐसे घाव होने लगते हैं और छोटे छोटे दाने, और ये सब मिल के बड़ा दाना बनाते हैं, फिर उसके बाद जिस वजह से पशु को चलने फिरने में दर्द होने लगता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना छोड़ देता है। ऐसे ही जब मुंह में छाले होते हैं तो मुंह में तो क्या करेगा पशु, अगर मुंह में छाले होंगे तो सबसे पहले खाना पीना छोड़ देगा, तो इस वजह से क्या होता है हम लोग अपने पशुओं को पालते हैं दूध उत्पादन के लिए पालते हैं, तो इसमें क्या होगा खाना पीना छोड़ेगा, दुग्ध उत्पादन में भी एकदम से कमी आ जाएगी, और ऐसे ही इसमें क्या है जब मुंह में छाले होते हैं तो इसमें लगातार लार टपकती रहती है।
1: डॉक्टर अंकिता जी, एक श्रोता हमसे जुड़ गए।
2: हाँ जी,
1: तो उनसे पहले बात कर लेते
2: जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: हेलो किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम?
1: अखिलेश नाम है हमारा, मऊरानीपुर रेबन से बोल रहे हैं जी।
0: जी जी अखिलेश जी, आज हमारे जो कार्यक्रम का विषय है वो है बरसात के मौसम में पशुओं की बीमारियों से बचाव एवं टीकाकरण। तो आज आपके जो प्रश्न के उत्तर जो देने के लिए आए हैं हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंकिता जी। तो आप अपने जो सवाल के जवाब है वो अंकिता जी से पूछ सकते हैं, तो पूछिए।
2: नमस्कार अखिलेश जी।
1: हाँ जी, जैसे कोई जानवर अपनी भैंसियाँ ऐसी होती हैं
2: जी,
1: ये 9-10 महीना चल रहा है, उसको टीका लगवाने की आवश्यकता होती है बरसात?
2: आवश्यकता तो अगर आप देखा जाएगा तो वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही आपको लगाना चाहिए था। आप अगर देखा जाए तो 3-4 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं ना। पर आप एक बार नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाएं, आपकी उसमें जो भी आपकी भैंस है उसकी जो भी स्थिति होगी उसको देख के पशु चिकित्सक ही ये डिसाइड कर पाएगा कि उसको टीका लगना है कि नहीं लगना है।
1: अच्छा, मतलब
2: आपको हाँ उन्हें दिखाना पड़ेगा।

0: संगीता जी से पूछ सकते हैं तो पूछिए।
1: नमस्कार अखिलेश जी।
2: हाँ जी, जैसे कोई जानवर अपनी भैंसियाँ ऐसी होती हैं
1: जी,
2: ये 9-10 महीना चल रहा है, उसको टीका लगवाने की आवश्यकता होती है?
1: आवश्यकता तो अगर आप देखा जाएगा तो वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही आपको लगाना चाहिए था। आप अगर देखा जाए तो 3-4 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं ना।
2: अच्छा।
1: पर आप एक बार नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाएं, आपकी उसमें जो भी आपकी भैंस है उसकी जो भी स्थिति होगी उसको देख के पशु चिकित्सक ही ये डिसाइड कर पाएगा कि उसको टीका लगना है कि नहीं लगना है।
2: अच्छा, मतलब
1: आपको हाँ उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो वहाँ पे उनकी जांच करके बताएंगे कि इसको टीका लगना है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आप बता रहे हैं कि 8-9 महीने में है तो उसकी स्थिति कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है टीका लगने के बाद एकदम उसका शारीरिक तापमान बढ़ जाए या कुछ हो जाए, तो इस वजह से आपको जांच करानी आवश्यक है। वही इसका पूरा वो लेंगे कि निर्णय लेंगे कि इसको टीका लगाना है कि नहीं लगाना है।
2: और भेड़ बकरी के लिए मैडम जी कुछ है?
1: हाँ जी, भेड़ बकरी के लिए भी है टीकाकरण, यही है। वर्षा ऋतु शुरू हो रही है तो इसमें आपको मुख्यतः 2 रोग पाए जाते हैं, जो कि आपने PPR और दूसरा फड़किया रोग, जिसे हम एंटेरोटॉक्सीमिया बोलते हैं, PPR को हम बकरी का प्लेग बोलते हैं। इन 2 बीमारियों के प्रति आपका टीकाकरण भेड़ बकरियों में करना जरूरी है, और साथ में खुरपका और मुंहपका का भी, क्योंकि ये
2: खुरपका होता है मैडम, खुरपका
1: खुरपका मुंहपका और PPR यानी बकरी प्लेग, और तीसरा आपका फड़किया रोग या एंटेरोटॉक्सीमिया। इन 3 बीमारियों के प्रति आपका भेड़ और बकरियों में भी टीकाकरण कराना जरूरी है, जो कि वर्षा ऋतु से आपको पहले करा लेना चाहिए। और अगर आपने नहीं कराया है, अभी भी आप नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके उनसे जानकारी लेके करवा सकते हैं
2: जी। ठीक है जी।
3: हेलो हेलो, किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रही हैं?
4: हम गायत्री बोल रहे हैं।
3: अच्छा गायत्री जी, आप कहाँ से बोल रही हैं?
4: हम बोल रहे हैं खड़ौरा से।
3: अच्छा गायत्री जी, तो आज का जो हमारा विषय है, बरसात के मौसम में पशुओं की बीमारियों से बचाव और टीकाकरण पे, तो आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अंकिता जी आई हैं, तो आपके जो भी सवाल जवाब है आप डॉक्टर साहब से पूछ सकती हैं।
1: नमस्कार गायत्री जी।
4: नमस्ते। हम जो कह रहे हैं कि हम ये गाय हैं दो,
1: हाँ जी,
4: तो इनके पैरन में चौमासन में जाने का होगा, जैसे खून से निकल रहा सफेद पड़ गए जी, खुराने आती कि सफेद पैरन में, और ना खून बस चल रही ना कचू ना पानी खा रही ना बंद खा।
1: अच्छा, आपने क्या अभी कुछ 1-2 महीने पहले टीकाकरण करवाया था जो सरकारी स्कीम के तहत चलता है सरकारी चिकित्सालय से?
4: हमने नहीं करवाया, जब कुछ था ही नहीं तो हमने कुछ करवाया नहीं, हमें इतनी जानकारी थी, अब जानकारी हुई तो हमने कही हम बात कर ले आपसे।
1: अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसके खुरों के बीच में कुछ हो रहा है ना?
4: हाँ।
1: स्त्राव जैसा भी निकल रहा है, कुछ छाले वगैरह हैं, मुंह में भी छाले पड़े हैं?
4: हाँ, छाले पड़े और सफेद सफेद हो रहे हैं,
1: सफेद सफेद छाले पड़े हैं, लार निकल रही है, लार लगातार निकल रही है क्या?
4: हाँ।
1: और इसमें क्या बुखार है, शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है?
4: हाँ है, गर्म रहता है, जैसे हाथ रखो ना।
3: जो है बीमार हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना पतला गोबर करने लगते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, अफरा चढ़ जाता है, तो इसका कारण क्या है?
1: इसका कारण एकदम से ये होता है ना कि वर्षा ऋतु से पहले पहले तो उन्हें हरा चारा मिला नहीं
3: जी,
1: है ना, तो उसमें एकदम से वो चारा उन्हें जब हरा मिलता है वो एकदम ज्यादा खाते हैं, और साथ में शायद दाना भी ज्यादा मिलता है। एकदम जो डाइट और खान पान का परिवर्तन है उस वजह से इसमें ब्लोट बोलते हैं, जिसमें हम अफारा बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, वो एकदम से हो जाता है। तो हमें, और ऐसा भी कह सकते हैं, हरे चारे में जब भी शुरुआत में जो अभी भी हम लोग खान पान है उसको हमें धीरे धीरे बदलना चाहिए
3: जी।
1: अभी इस समय ये हुआ होगा कि एकदम से इस 1 महीने पहले तक सूखा खाना मिल रहा था उन्हें चारा, और अचानक से बिल्कुल हरा हरा चारा मिल रहा है, तो इस वजह से ये इनको ब्लोट भी हो सकता है, मतलब अफारा हो सकता है, पिला सकते हैं या आप सोडा खिला सकते हैं, मीठा सोडा, तो उससे गैस निकल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये झागदार अफारा हो जाता है
3: जी,
1: तो उसमें हमें क्या करना होता है, पशु चिकित्सक को दिखाना है। वो बहुत तेज जो उसका हमारा जो पशु है, जैसे गाय और भैंस, इनका जो पेट है वो 4 भागों में विभाजित होता है, तो उसमें जो एक भाग है जिसे हम रूमेन बोलते हैं उसमें ये आपका गैस जो जाती है वहां पे जाके इकट्ठा हो जाती है, और जो झागदार वाली गैस होती है या झागदार जो अफारा होता है वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें अगर ज्यादा हो जाए और इन सब दवाइयों घरेलू नुस्खों से आराम नहीं मिल रहा है तो पशु चिकित्सक को दिखाना बहुत जरूरी है।
5: सभी हमसे जुड़ गए तो इसमें बात कर लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आपको स्वागत है भैया। नमस्कार।
6: नमस्कार।
5: हाँ, कौन सा बोल रहे हैं आप?
6: अमर।
5: अमर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: खेरी से।
1: खेरी से, हाँ जी
5: जी जी। हाँ, तो आज हमारे बीच में डॉक्टर साहिबा अंकिता जी उपस्थित हैं, तो पशुपालन से संबंधित अपन सवाल कर सका। कौन कौन से पशु पाले अपन?
6: हाउ पाले।
5: हाँ, तो अमर जी, का समस्या आ रही अपन है पशुपालन में?
6: समस्या जा पूछना थी कि ये मौसम को जो जो है मतलब मौसम आवे के पहले जो बीमारियाँ काय होने लगती है जी पशुन का?
1: आप कहना चाह रहे हैं कि वर्षा बरसात होने से पहले बीमारियाँ क्यों होने लगती है ना?
6: हाँ।
1: तो देखिए, आपको आप भी जान रहे हैं, जैसी वर्षा ऋतु आती है या बारिश आती है तो आपने देखा होगा आसपास कीड़े मकोड़े

0: एकदम से बढ़ने लगते हैं, उससे पहले नहीं हो रहे होते हैं,
1: हाँ,
0: है
1: उन लगा
0: ना।
1: झींगा लगा
0: हाँ,
1: यार।
0: मक्खियां भी बढ़ने लग गई, मच्छर भी बढ़ने लग गए, और किल्ली और चीचड़े ये सब भी बढ़ने लग गए होंगे।
1: हाँ
0: हाँ, तो ये जब बढ़ते हैं, ये कुछ बीमारियों के जीवाणु या विषाणु को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं, है ना, पशुओं में ये फैलाते हैं। तो इनकी
1: अच्छा
0: संख्या बढ़ती है और वातावरण में नमी होती है, जिसके कारण जो बहुत अच्छा आप बोलेंगे माध्यम होता है, जिसमें जीवाणु और विषाणु पनपते हैं और अपनी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, है ना। और यही जीवाणु विषाणु बहुत टाइप के रोग भी उत्पन्न करते हैं। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो अपने आप बीमारियां बढ़ेंगी।
2: अंकिता जी, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आई, और बरसात में पशुओं की बीमारी से कैसे बचाएं और उनके आसान उपाय और देखभाल विषय पे अपन ने टीकाकरण कब कराए चाहिए, कैसे कराए चाहिए, इन सब मुद्दन पे अपन ने विस्तार से जानकारी दी, और आशा करत कि हमारे जो पशुपालक भैया हैं वे आपके जवन से संतुष्ट हुई हैं और हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भैया रो आप है, अपन वाले सुन रहे थे हेलो किसान कार्यक्रम। तो अब समय को पता ही नहीं चलो कितनी जल्दी अपने कार्यक्रम किसान वाणी को समय हो रहा। तो अपने भैया संतोष पाल,
0: और प्रियंका वर्मा को आज्ञा दें, नमस्कार।
2: नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसानवाणी। यह कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा नए पुराने गीत सुहाने। शाम 7:19 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा खुशबू माटी की।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा पुराने नगमे। रात्रि 8:45 पर कार्यक्रम होगा समाचार संध्या का। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 9:15 पर विविध भारती के कार्यक्रम होगा, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा फोन इन फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग होगा सीमा कुशवाहा का। प्रस्तुत करता होंगी अंजलि कुमारी।

हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, क्षमा कीजिए, ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं आदमी फिल्म के इस गीत से, जिसमें स्वर मोहम्मद रफी का है। गीत लिखा है शकील वदायनी ने, धुन बनाई है नौशाद ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आई सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, बॉर्डर फिल्म से। स्वर सोनू निगम और अलका याग्निक के हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

क्षमा कीजिए, तकनीकी खराबी के कारण हम आपको ये गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। हमने लिया है आजा नचले फिल्म से। स्वर सुनिधि और सोनू निगम और साथियों के हैं। गीत लिखा है जयदीप साहिनी ने और धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत पेंटर बाबू फिल्म से। स्वर लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का है, गीत लिखा है मनोज कुमार ने, धुन बनाई है उत्तम जगदीश ने।

आदमी सड़क का अभी आप सुन रहे थे। इस फिल्म का गीत स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की थी। गीत लिखा था वर्मा मलिक ने, धुन बनाई थी रवि ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत बाजी फिल्म से। स्वर लता मंगेशकर और शबीर कुमार का है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी हम सुन रहे थे चलते चलते फिल्म का गीत, सुर शैलेंद्र और लता मंगेशकर की थी। गीत लिखा था अमित खन्ना ने, धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। आई सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, चुप चुप के फिल्म से, स्वर के और सुनिधि चौहान के हैं। शब्द रचना है समीर की, धुन बनाया है हिमेश रेशमिया ने।

साथियों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:19 होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: निश्चित रूप से बहुत।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास का सपना डबल इंजन सरकार ने साकार किया है। सरकार इस क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
3: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अपने चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन किए और पावन कामदगिरी की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही इनायत नगर स्थित एक सर्राफा प्रतिष्ठान के संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि संत समाज ने ट्रस्ट के फैसलों पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर में चढ़ावा गिनती स्थल का निरीक्षण किया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
4: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
2: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले वीआईपी पास की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल के रेफरेंस आईडी सस्पेंड कर दी गई है।

0: इसके चलते उनके माध्यम से विशेष दर्शन पास जारी नहीं हो रहे हैं। नई रेफरेंस आईडी अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं। नए पास नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद बन सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
1: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावित ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित

0: ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति 10 से 15 जुलाई तक पणजी और लखनऊ का दौरा करेगी। इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। समिति इस दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, अधिवक्ता संघों और विभिन्न पेशेवर संगठनों के साथ परामर्श करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतिगत नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश को 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रदान किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 750 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश के कुल उत्पादन में अकेले यूपी 22% योगदान कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर प्रतिबद्ध है और ये कीर्तिमान आसानी से हासिल करेगी।
2: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों को 1 लाख से अधिक डिग्रियां और 51 पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में 9 छात्र और 42 छात्राएं शामिल हैं। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट का वितरण और 800 बालिकाओं का HPV टीकाकरण कराया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अब तक लगभग 3 लाख बालिकाओं का निशुल्क HPV टीकाकरण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। TET परीक्षा 2 और 3 जुलाई को प्रतिदिन 2-2 पालियों और 4 जुलाई को प्रथम पाली में सम्पन्न हुई थी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कई जनपदों में बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। राजधानी लखनऊ समेत फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर सहित कई जिलों में आज बारिश हुई। बारिश और जलभराव के चलते संभल और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यहां 11 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट यूपी में हेवी टू वेरी हेवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से कल जो है इसके सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़

रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खुशबू माटी की। इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं देवी भजन। कलाकार हैं बीरपाल सिंह और उनके संगी साथी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

खुशबू माटी की कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लखनलाल के स्वर में लोक शैलीबद्ध लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला लोकगीत।

वृक्षारोपण लोकगीत आप सुन रहे थे नारायण दास कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा और उनके संगीत साथियों के स्वर में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में चेतावनी।

खुशबू माटी के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संबित स्वर में ये लोकगीत। इसके साथ ही खुशबू माटी के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को हैं। हम अपना अगला कार्यक्रम अब आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका आपको सुनवा रहे हैं कचरे का मालिक, लेखक विनायक शंकर विनय, निर्देशिका रंजीत अहलुवालिया।
1: है? अरे कुछ समझ में नहीं आता, जहाँ देखो कचरे के ढेर, जहाँ देखो कूड़े के पहाड़, मैं कहता हूँ ये कूड़ा करकट एक दिन सारे घर को बैकुंठ पहुँचाएगा। डब्बू की मम्मी, ओ डब्बू की मम्मी, ओहो, अरे सुनती हो या प्यारी हो गई हो?
2: क्या हो गया जी, क्या हो गया? ओहो, क्या हो गया जो चीख चीख कर मोहल्ला सिर पर उठा रहे हो?
1: मैं पूछता हूँ कि ये घर है या म्यूनिसिपैलिटी की कोठी
2: है? है?
1: अरे यहाँ इंसान रहते हैं या घोड़े? अरे ये कचरा डालने की जगह है बिल्कुल बीच रास्ते में है? लाख बार कहा है कि घर की साफ सफाई रखो, मैं उठाओ इस कचरे को, मैं कहता हूँ उठाओ, उठाओ यहाँ से।
2: मैं क्यों उठाऊं जी इस कचरे को? मैं नहीं उठाऊंगी इसे।
1: तो मैं उठाऊंगा इसे। है? अरे दिन भर कचहरी में मारा मारा फिरूं, शाम को घर आकर सफाई करूं, है? क्यों नहीं उठाओगी तुम इसे? मैं कहता हूँ उठाना पड़ेगा, उठाओ।
2: मैंने कह दिया ना, नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाऊंगी। जिसने फेंका होगा ये कचरा वही उठाएगा इसे। मुझे को डांट रहे हो जोर जोर से, उनसे कहो ना जिनने फेंका है ये कचरा।
1: किन्ने फेंका है, है? तो ये कचरा क्या तुमने नहीं फेंका है? ओहो, किसने फेंका ये कचरा, है? बोलो।
2: और कौन फेंकेगा, ऊपर से हुई है बरखा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने, जब से आए हैं रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कल इनके बच्चे ने मेरे ऊपर जूठा पानी डाल,
1: जूठा पानी,
2: और परसों गमला गिरा दिया था। भगवान ने ही बचाया उस दिन तो, वरना मैं तो मर ही जाती।
1: समझा?
2: और आप हैं जो मुझे को,
1: ये इनकी करामात है, है? इनकी ये हिम्मत, कल जूठा पानी डाल दिया, परसों गमला गिरा दिया और आज कचरा फेंक गए हैं। ये शराफत का ये नतीजा है। अरे लाख बार कहा पंडित जी से कि ऐसे वैसे को मकान मत देना किराए से, पर लालची जो ठहरे। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा। 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ पर ऐसी हरकत किसी ने नहीं की, क्या समझ रखा है इन लोगों ने?
2: हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही डांटो, आए हैं उसी दिन से कह रही हूँ कि इन्हें समझा दो। दिन भर इनके बच्चे ऊपर दना दन कूदा करते हैं। हाँ, कल इनके पिता, मेरे पिताजी की तस्वीर दीवार से घिर कर टूट गई, उनका गुर पी कर रह गई। मगर करूँ क्या, जब आप ही कुछ नहीं कहते।
1: आज इस रोज रोज की रामायण का अंत ही होगा। मैं समझता था आदमी शरीफ है, लेकिन अब नहीं सोच सकता इसके बारे में। सोचता था आप ही समझ जाएगा, लेकिन अब मुझे समझाना पड़ेगा बच्चे को, है? अरे महीना भर आए को हुआ नहीं और इतने कहर ढा दिए। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा, या तो इन्हें रख लो या हमें रख लो। पंडित जी, ओ पंडित जी। अरे लालची बूढ़े, अरे कहाँ मर गया? ओ पंडित जी, पंडित जी महाराज।
3: क्या है मुंशी जी, क्या बात है?
1: क्या है,
3: क्या हो गया
1: पंडित जी? अरे मैं कहता हूँ आज तो आपको फैसला करना ही होगा।
3: फैसला?
1: हाँ।
3: कैसा फैसला?
1: इस बात का फैसला कि मकान में हम रहें या नहीं है? अरे आप हम पर होने वाली जुल्म ज्यादतियों को रोकेंगे भी या नहीं है? आप मेरे घर को म्यूनिसिपैलिटी की कोठी बनने से बचाएंगे या नहीं? आप मेरे घर को तस्वीरों की सुरक्षित रहने देंगे या नहीं? हाँ
3: है, म्यूनिसिपैलिटी की कोठी, आपके घर की तस्वीरें, आखिर बात क्या हो गई मुंशी जी? साहब आप क्यों नहीं कहते?
1: अजी

0: हूँ साहब साहब, परसों मेरी घरवाली का सिर फूटते फूटते बचा, कल उसके सिर पर ऊपर की गैलरी से जूठे पानी का अभिषेक किया गया, मेरी एक तस्वीर भी टूट गई है। मैं कहता हूँ बताइए ये सब है क्या?
1: शांत होइए मुंशी जी, शांत होइए, आखिर किसने किया ये सब?
0: मैं कहता हूँ कैसे हो जाऊं शांत पंडित जी? अरे मेरे दिल में आग धधक रही है, आग। 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ पर ऐसी हिमाकत किसी ने नहीं की। मैं पूछता हूँ मेरे घर के सामने कूड़ा करकट डालने का किसी को क्या अधिकार है? हा?
1: किसने डाला कूड़ा करकट, मुझे बताइए तो सही।
2: और कौन डालेगा पंडित जी, नाक में दम कर रखा है उन पर ऊपर वालों ने, वही फेंक गए मेरे दरवाजे पर कचरा।
1: ऊपर वाले मास्टर साहब ने? वे यहाँ क्यों कर डालेंगे कचरा, आपने देखा था?
2: अजी देख लेती तो डालने वाले के हाथ में तोड़ देती, उनके सिवा यहाँ है ही कौन जो करेगा ऐसी काली करतूत।
0: ये कचरा ही नहीं पंडित जी, जब से आए हैं हर रोज कोई ना कोई नया उत्पात, हर रोज एक नई मुसीबत, लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ।
1: पर जरा मेरी तो सुनिए।
0: अरे आपकी तो 10 साल से सुन रहा हूँ पंडित जी है? अरे आज आपको मैं कहता हूँ मेरी सुननी होगी, मेरी। लाख बार आपसे कहा कि देखभाल कर मकान किराए से देना, पर आप जो ठहरे लालची है, न जाने किसी अरे गहरे नत्थु खेरे को धर पकड़ लाए। अरे मैं कहता हूँ पंडित जी, कितनी बार कहा मेरी साड़ू को मकान दे दो, लेकिन लेकिन आपने 10 रुपए के लालच में ऐसे वैसे लोग रख लिए। राम राम राम राम, अब आपके लालच का फल हम लोग भुगत रहे हैं। हे प्रभु हे प्रभु।
3: कौन है जी ऐसा वैसा? मैं ऐसा वैसा हूँ? हेरा गेरा नत्थू खेरा हूँ, एक घंटे से चुपचाप सुन रहा हूँ तो बिना रोके जवान का टाइपराइटर चलाया जा रहा है।
0: बड़ी मेहरबानी।
3: मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पंडित जी कि आप मेरे लिए इन्हें ऐसी बातें करने देंगे, सोचता था चुप रहूं, पर आखिर कब तक? रोज सुबह शाम की महाभारत मैं नहीं सुन सकता, आज इसका अंत ही होगा।
1: धीरे बोलिए मास्टर साहब, जरा शांति से काम लीजिए, आसपास के लोग सुन रहे होंगे, आखिर हम लोग शरीफ।
3: अरे शराफत गई भाड़ में, ऐसों से शराफत, इनसे शराफत यानी भैंस के आगे बीन बजाए।
0: क्या कहा? मैं भैंस यानी मास्टर साहब, सुन रहे हैं आप? आप मुझसे भैंस कह रहे हैं, भैंस है? अरे जबान को लगाम दो लगाम है पंडित जी, सुन लिया आपने?
1: अरे आप तो
0: मुझे भैंस कह रहे हैं, भैंस। हाँ मुहावरा।
1: क्या आप भी बच्चों की तरह?
0: हाँ मुहावरा, आप तो मैं जानता था कि मुझे ही दबाएंगे, 10 साल की शांतिपूर्ण किराएदारी का ये फल दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ इन्हें कुछ कहिए ना, परसों गैलरी से इनके लड़के ने गमला गिराया, क्या गमला, कल जूठा पानी डाल दिया मेरी बीवी के सर पर, और आज कचरा फेंक गए हैं यहाँ। अरे मैं कहता हूँ इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म।
3: अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए,
0: आप मुझे आनी चाहिए।
3: आप अपने घर के लोगों की काली करतूतों को तो देखिए,
0: आप देखिए,
3: आपके बच्चे मेरे घर के दरवाजे की सांकल लगा गए, मुझे 2 घंटे परेशान होना पड़ा, मेरे घर के सारे पौधों को नष्ट कर दिया आपकी वानर सेना ने, मेरे गमले तोड़ डाले।
0: अरे मुझे नहीं मालूम ये कुछ, पंडित जी इनसे कह दीजिए कि कचरा यहाँ से फौरन उठा ले जाए।
3: कचरा उठा लूं? मैं कह रहा हूँ मुंशी होश में बात करो, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम मुझसे अपने घर का कचरा उठा
0: लेते हो? कचरा उठाओ,
3: सच मानिए पंडित जी, आपके मुलाहजे से गम खा रहा हूँ, नहीं तो ठीक कर देता इस मुंशी को।
0: ये ठीक करेगा?
1: शांत हो जाइए आप लोग, पढ़े लिखे समझदार होकर भी ऐसे झगड़ रहे हैं। मास्टर साहब क्या आपके घर का है ये कचरा?
3: अजी साहब इतना कचरा तो मेरे घर दिवाली की सफाई में भी नहीं निकलता, मैं ऐसा दलिद्दर थोड़ी
0: हूँ। मैं दलिद्दर हूँ? अरे जबान को संभाल कर बात करो मास्टर, उठाओ इस कचरे को यहाँ से।
3: खबरदार जो मुझे फिर कचरा उठाने को, ये कचरा मेरे घर का हो ही नहीं सकता।
0: ऐसी
3: गंदगी और मेरे घर में, ये सिगरेट के पैकेट, ये बीड़ी के बंडलों के पोते, टूटे हुए अंडे, मैं पीता हूँ सिगरेट बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे।
0: तो क्या मैं पीता हूँ बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे? अरे मेरी तो 7 पीढ़ियों ने तंबाकू छुई भी नहीं है, है? और अंडे, हे राम राम राम राम घोर कलयुग। अरे देखा पंडित जी, मांसाहारी होने का आरोप लगा रहे हैं मुझ पर सरेआम, अब मैं ज्यादा और नहीं सह सकता। मैं कहता हूँ पंडित जी उठवाइए ये गंदगी यहाँ से।
3: मैं कहता हूँ पंडित जी रोकिए इन्हें, नहीं तो आज वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए।
0: अरे ये धौंस किसी और को देना मास्टर, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मैं कहता हूँ उठाओ इस कचरे को यहाँ से, उठाओ।
3: पंडित जी अब मैं यहाँ 1 मिनट भी और ठहरा तो गजब हो जाएगा, मैं जाता हूँ, मैं इस मुंशी के बच्चे पर मानहानि का मुकदमा।
0: पहले कचरा
3: उठाइए, अपमान कि मैं किसी के घर का कचरा उठाऊं?
0: हाँ तुम यहाँ से कचरा उठाए बगैर जा नहीं सकते। हाँ
3: अच्छा रोक लो मुझे।
0: हाँ रोकूंगा, 1 बार नहीं 10 बार रोकूंगा। तुम उठाओ ये कचरा, मैं कहता हूँ मास्टर कचरा उठाओ।
3: मैं कह रहा हूँ मुंशी छोड़ दो मेरा।
0: मैं कहता हूँ कचरा उठाओ।
3: अच्छा तुम यूं नहीं मानेगा?
1: अरे अरे
3: नहीं छोड़ता।
1: अरे अरे छत गृहस्थों को हाथापाई शोभा नहीं देती, छोड़िए छोड़िए। अरे अरे ये क्या मुंशी जी, मास्टर जी, पिताजी ये क्या हो रहा है? किशोरी ने रोको बेटा।

0: क्या हुआ पिताजी?
1: मुंशी जी, मास्टर जी, कुछ बताइए तो।
0: बात कुछ नहीं बेटा, मुंशी के घर के सामने जो कचरा पड़ा है ना, मुंशी जी कहते हैं मास्टर साहब के घर वाले फेंक गए, बस इसी बात पर ये मल्लयुद्ध हो रहा। अरे अरे अरे,
2: इस महायुद्ध का इतना तुच्छ कारण,
0: लाइए मैं इस कारण को ही नष्ट कर देता हूँ,
2: मैं फेंक देता हूँ इसे बाहर। आखिर कुछ समझदारी से काम लीजिए,
1: इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बवाल।
3: अरे बवाल ना करूं तो क्या करूं, मेरे घर का कोई कूड़ा है ये है? अरे कचरा यहाँ पर फेंक दिया, कोई कूड़ा घर समझ रखा है इसे? मैं ऐसी शरारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर उठाओ कचरा।
2: शांत होइए मुंशी जी, शांत होइए, मैं फेंक आता हूँ इस कचरे को।
4: अजी सुन रहे हो, गजब हो गया। अरे मेरे सोने की अंगूठी, हाय हाय हाय, मेरे सोने की
3: अंगूठी। अरे अरे अरे, क्या हुआ, क्या हो गया अंगूठी को?
4: न जाने कहाँ गुम हो गई मेरी अंगूठी, अभी अभी तो मेरे हाथ में थी, न जाने कहाँ किसे।
3: अरे भाई ढूंढो,
4: अभी क्या करूँ,
3: कैसे गुम हो गई?
4: सारा घर तो जान मारा,
3: अच्छे से ढूंढो,
4: सारा घर तो जान मारा, कहीं पता नहीं, देखो कहीं कचरे में तो नहीं।
3: कचरे में अंगूठी?
4: हाँ, शायद बुहारते समय।
2: आपकी अंगूठी यह पड़ी है कचरे में।
4: अरे हाँ हाँ, यही है। हे भगवान, लाओ किशोर भैया मेरी अंगूठी। भगवान बड़ा दयालु है, पूरे 32 नए पैसे का प्रसाद कबूला था मैंने। लाओ लाओ लाओ लाओ, हे लाओ किशोर भैया मेरी अंगूठी।
2: ये अंगूठी आपकी नहीं
4: है। क्या कहा, मेरी नहीं? वाह, मेरी ही तो है।
2: वाह, आपकी कैसे होगी, आपकी अंगूठी और मास्टर साहब के कचरे में? ये कचरा तो मास्टर साहब का है, अंगूठी भी उन्हीं की होगी।
3: अरे मास्टर साहब की कैसे होगी है? अरे किशोर भैया, ये अंगूठी तो हमारी है।
2: वाह मुंशी जी, खूब, कचरा आपका नहीं और अंगूठी आपकी है, वाह वाह वाह।
5: देख लीजिए पंडित जी, आप ही देख लीजिए अपनी आंखों से।
3: अरे कचरे को मारिए गोली, अंगूठी हमारी है, हमें दे दीजिए पंडित जी।
4: सचमुच भगवान बड़ा दयालु है।
2: अंगूठी उसी की है जिसका ये कचरा है, और वो उसी को मिलेगी जो कचरे की मालकी मंजूर करेगा। बोलिए है कि नहीं ये कचरा आपका?
3: ये कचरा? हाँ भैया हाँ, अरे कौन इनकार करता है कि कचरा हमारा नहीं है। मान लिया साहब कि ये कचरा इतना उतना नहीं, सारा का सारा कचरा हमारा है बस।
5: देख लिया किशोर तुमने? देख लिया पंडित जी, अब ये अंगूठी मैं लूंगा, इन्हें ये कदापि नहीं मिल सकती।
3: अरे छोड़िए भी मजाक मास्टर साहब। पंडित जी, अरे छोटे मोटे रगड़े झगड़े जो है ना, वो तो अड़ोस पड़ोस में चलते ही रहते हैं। अरे लाइए अंगूठी, अंगूठी दीजिए पंडित जी।
0: आपका कैसे हो सकता है मुंशी जी, आप तो बीड़ी नहीं पीते, अंडे नहीं खाते।
5: बिल्कुल ठीक।
3: अरे सब करता हूँ पंडित जी, सब करता हूँ, सब करता हूँ, क्या झूठ बोलूं अब आपसे। मानव की योनि ली है ना, तो ये सारे जितने पाप हैं, ये सारे पाप करने ही पड़ते हैं। देह धरे को दंड है पंडित जी, सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, और किशोर भैया मूर्ख भुगते रोए। लाओ मास्टर साहब मेरी अंगूठी दे दो, आखिर मनुष्य हूँ ना, मनुष्य हूँ, आखिर पाप तो करता ही रहता हूँ।
5: मनुष्य नहीं पशु हो?
3: पशु ठीक, पशु हूँ।
5: तुम गिनाने जानते
3: हो? वो भी ठीक, मेरी अंगूठी। अरे कुछ भी कह लो भैया, किशोर भैया, पंडित जी, मास्टर जी, जो मर्जी है वो कह लो, पशु कह लो, जीव जंतु कह लो, और जो मर्जी है वो कह लो, लेकिन अब ज्यादा न सताओ मेरी अंगूठी।
0: ठीक है, मेरी पर अंगूठी आपको तभी मिलेगी जब आप मास्टर साहब से माफी मांगकर अपने हाथों से ये कचरा उठाकर फेंक देंगे,
2: और फिर कभी ऐसी हरकत न करने प्रतिज्ञा करेंगे।
5: जी ये क्या प्रतिज्ञा करेंगे, झूठे।
3: माफ करिएगा मास्टर साहब, मार साहब पहली बार गलती हुई है मेरे से। आप तो बहुत भले आदमी हैं, मोहल्ले में आपके जैसा आदमी मैंने तो नहीं देखा। माफ कर दीजिए ना मार साहब, माफ कर दीजिए। अरे भाई डब्बू की अम्मी, ओ मम्मी की डब्बू, अरे ये कचरा उठाओ यहाँ से, फेंको, संभालो इसे, उठाओ कचरा।
4: हाँ हाँ, तो क्या हुआ, अभी फेंक देते
3: हैं। हाँ, फेंक देते हैं।
4: चलो चलो, ला ला ला, ला चलो चलो।
6: कचरे का मालिक, विनायक शंकर विनय की लिखी हास्य नाटिका आपने सुनी, निर्देशिका रंजीत अहलुवालिया, हमारे आकाशवाणी इंदौर की ये प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने नगमे। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत से।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का गीत, स्वर मुकेश और लता मंगेशकर की थी।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित।

0: मंगेशकर की थी।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

सिनेमा के इतिहास में अपना उत्कृष्ट निर्देशन करने वाले गुरुदत्त का आज जन्मदिन है, यानी कि उनकी जयंती है। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में उनका नाम है। आइए उनकी याद करते हैं बाजी फिल्म के इस तराने से।

0: सेना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: साथियों, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का पुराने नगमे। आइए अब आपको आज आपको जानकारी हम दे दें कि आज हिंदी सिनेमा

साथियों, आज अभिनेता संजीव कुमार की जयंती भी है। भारतीय सिनेमा के आप महान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में शुमार किया जाता है। हम श्रोताओं को आज सुनवाते हैं ये गीत उनकी याद में, आंधी फिल्म से।

इस गीत के साथ ही, इस गीत के साथ ही पुराने नगमे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा समाचार संध्या का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक

0: भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित

0: राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस

0: and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में गाइड फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए।

0: Chauncey. जब बाहर हो रिमझिम की फुहारे, हाथ में हो कड़क चाय की प्याली और रेडियो पर बजे आपकी पसंद का मल्हार, तो क्या ही कहने। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ सीमा कुशवाहा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं सुपर हिट शो हेलो झांसी का मानसून स्पेशल। तो काले काले बादल हैं आसमान में, मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू भी आ रही है, तो चाय पकड़ों के साथ क्यों ना अपने पसंद के फरमाइशी गीतों का भी आनंद लिया जाए। तो आज का ये कार्यक्रम हम लेकर आ गए हैं और करते हैं अपने सुहाने सफर की शुरुआत और लेते हैं अपने पहले श्रोता की ये कॉल। हेलो झांसी।
1: नमस्ते
0: सर। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: धन्यवाद। मैं गाँव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात से।
0: गुजरात से बोल रहे हैं?
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
0: धीरज जी स्वागत है आपका। बताइए क्या करते हैं आप और कैसे हैं?
1: मैं अच्छा हूँ और आप सभी भी अच्छे होंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: और मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी से जुड़ता हूँ। आज आपने फेसबुक पर जो पोस्ट रखा और न्योता जी या श्रोताओं को फोन करने का, हमें एक झांसी से एक लगाव हो गया है।
0: जी बिल्कुल, बताएं झांसी के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: यानी जानते तो है, झांसी की एक रानी वीरांगना हो गई
0: जी।
1: तो उसके बारे तो जानते हैं, लेकिन जो आकाशवाणी झांसी का जो कार्यक्रम आते
0: जी जी,
1: उसमें हम जुड़ना बहुत, यानी एक महीने के अंतर अंदर भी जुड़ जाते तो हमें माफी चाहते हैं, क्योंकि इतना लोकप्रिय कार्यक्रम आपका ये है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप हमारे आकाशवाणी झांसी के कार्यक्रमों को पसंद करते हैं और आप हमें एक महीने के अंतराल पे भी कॉल करते हैं, तो ये भी आपका बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आप इस रेडियो सुनने के अलावा और क्या शौक रखते हैं?
1: देखा जाए तो मैं राजकीय बाबतों में भी यानी जानता हूँ, यानी समाचारों के बारे में बहुत रुचि रखता हूँ।
0: अच्छा जी।
1: देश की और धार्मिक बाबतों में भी ज्ञान रखता हूँ, जनरल नॉलेज भी मुझे ज्यादा यानी सूझबूझ होती है। और दीदी देखा जाए तो ये जब मेरे को प्रेरणा मिली आकाशवाणी यानी रेडियो से, मैं 17-18 साल का था तब से सुन रहा हूँ।
0: आज मेरी आयु बहुत बढ़िया,
1: मेरी आयु 57 साल है।
0: अच्छा,
1: लेकिन आकाशवाणी ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा।
0: अरे बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि आपको और आकाशवाणी का साथ हमेशा बना रहे। आप इतनी सारी जानकारी रखते हैं और जिसका श्रेय आप दे रहे हैं रेडियो को, आकाशवाणी को, ये बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो बताइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आपने बोला है कि जो बारिश की ऋतु है तो इसके अनुरूप गाना है
0: जी जी,
1: सावन को आने दो, मेघारे मेघारे,
0: मेघारे मेघारे या सावन को आने दो, ये गीत सुनना चाहते हैं। ठीक है सर, आपकी कॉल को हम शामिल कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग सीमा कुशवाहा का है। प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।

0: हेलो झांसी।
1: जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते। आप
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से। जी
0: बताएं प्रेम जी, कैसे आए आप?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: बताइए, इस समय क्या मौसम है आपके वहां पर, क्या चल रहा है?
1: जी काफी तेज बारिश हुई थी कल हमारे यहाँ पर जी,
0: जी
1: और अभी मतलब काफी ठंडा मौसम हो चुका है, ठंडी हवाएं भी चल रही है, बादल आ भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं और गरज के साथ में कुछ बादल खाली भी निकल रहे हैं। मतलब आपको बताऊं, बड़ा सुहाना मौसम हो गया है।
0: जी हाँ, सुहावना मौसम दस्तक दे चुका है बरसात का
1: जी
0: चारों ओर।
1: हाँ
0: देखिए यही माहौल है
1: जी, और
0: हमारी।
1: आपको बताऊं जैसे कि हमारे यहाँ पे किसान लोग हैं ना,
0: जी
1: उन्होंने सभी ने मतलब अपने अपने खेतों में मतलब सोयाबीन की फसल लगाई है।
0: जी
1: हाँ जी, और जब सोयाबीन की फसल पक के तैयार हो जाती है 2 से 3 महीने में
0: जी जी
1: जी, तो फिर आपको बताऊं यहाँ पे गेहूं और लहसुन मटर की फसल लगाई जाती है फिर से। जी
0: चलिए, अच्छी बात है अपने यहाँ के किसानों के बारे में आप इतनी जानकारी रखते हैं। देखिए ये
1: हाँ
0: जो मौसम है बरसात का, और ये हमारी प्रकृति का एक सबसे सुंदर, एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है हम लोगों के लिए।
1: जी
0: और ये
1: बिल्कुल,
0: जन
1: हर मौसम
0: जीवन को, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सभी को एक नया जीवन देता है। तो किसानों के लिए तो ये एक बहुत ही एक अच्छा, एक सुनहरा मौका होता है
1: जी
0: कि
1: हाँ, और आपको
0: प्रकृति।
1: जैसे बताऊं कि हर जगह पानी भर जाता है ना,
0: जी जी
1: तालाब में, नदियाँ और कुएं, और तो इसमें मतलब ना पशु पक्षियों को भी मतलब काफी मतलब ऐसा उत्साह रहता है, ऐसा दिखता है का जब मौसम बरसात होती है ना, तो पशु पक्षी जो होते हैं ना, ये खुद मतलब ऐसा हमें बताते हैं कि काफी अच्छा इनको भी लग रहा है।
0: बिल्कुल जी, जो पौधे ऐसे और पेड़ ऐसी जगहों पर हैं जिन्हें, जो जंगल में हैं या फिर जिन्हें कहीं पानी नहीं कोई देने वाला है, तो प्रकृति अपनी तरफ से उन्हें पानी पिलाने आती है, मैं ऐसा मानती हूँ। चलिए अब
1: मैं
0: बताइए अपनी
1: मोबाइल ऐप
0: पसंद
1: पे
0: के
1: आप
0: बारे में हमें, आज आप कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं?
1: जी फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी, और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा की झोंके से।

0: हेलो झांसी। हाँ
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। जी,
0: विदिशा मध्य प्रदेश से हारून जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैं इनका याद कर लें, महीना भर हो गया आज।
0: चलिए भाई, बहुत धन्यवाद, आपने 1 महीने बाद हमें कॉल किया है। काफी श्रोता कॉल करते हैं तो हम सबको शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमें।
1: जी, देखें का दूसरों को भी मौका भी मिलना बहुत जरूरी है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल। चलिए बताइए अब हारू जी, हमारे इस कार्यक्रम को आप कैसे सुनते हैं और क्या पसंद करते हैं?
1: बस हमें क्रिकेट का शौक है, मोबाइल ऐप से हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं।
0: मोबाइल से आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आपके साथ और आपके मित्र दोस्त या आपका परिवार के लोग भी सुनते होंगे?
1: जी हम लेकिन नहीं सुनते अकेले, हम अकेले ही अकेले सुनते हैं।
0: अरे तो उनको भी शामिल कीजिएगा अपने साथ, बताइए उन्हें हमारे
1: लेकिन
0: कार्य।
1: हमारे हमारे डैडी को तो अकेला क्रिकेट का शौक है, अकेला खाली बस।
0: अच्छा, चलिए
1: हाँ,
0: ठीक है, आपके सभी के
1: और
0: अपने अपने
1: लेकिन
0: शौक।
1: आपके इधर झांसी का मौसम कैसा है?
0: जी झांसी का मौसम काफी अच्छा है, 2-3 दिन से काफी अच्छी बारिश हो रही है सुबह शाम। अभी
1: जी
0: भी सुबह से बारिश का मौसम बना हुआ है, ठंडक है।
1: जी मौसम हमारा अच्छा ठंडा है, लेकिन हमारे इधर भी खूब अच्छी बारिश हो गई अभी 8-10 दिन रोज से।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बधाई है सभी के लिए। बारिश का बरसना भरपूर, अपने
1: जी
0: नदी तालाब कुएं पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी को एक नया उल्लास नई उमंग मिल जाती है बरसात में। बता दे अपनी पसंद के बारे में हमें।
1: हाँ, सुन सुन सुन बरसात की धुन।
0: सुन सुन बरसात की धुन। चलिए इस गाने को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। अरुण जी हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो झांसी,
1: हेलो झांसी मैडम,
0: नमस्ते। कौन बोल रही हैं?
1: मैं धर्मो जायसवाल बोल रही हूँ मैडम, झांसी से।
0: क्या करती हैं मैडम आप?
1: मैडम मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में काम करती हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप घर संभालती हैं। और
1: हाँ
0: क्या, और इसके अलावा आपके क्या क्या शौक है? घर में रहते हुए घर के कामों के अलावा आप और क्या करती हैं?
1: कुछ नहीं, यही गाना वाना ज्यादा सुनते रहते, मतलब ये आता है सखी सहेली आपका गाना आता रहता है। बस हमने फोन अभी 2 महीने में लगाई मैंने
0: चलिए,
1: आपको।
0: रेडियो सुनना और मतलब गाने सुनना आपको पसंद है, गीत संगीत और
1: हाँ हाँ जी, हम छोटे थे तभी से हमें बहुत शौक है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज कौन सा गाना सुनने का मन है आपका?
1: हमें आज गाना सुनने का मन है चंदा सूरज का गाना, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
0: अच्छा, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। चलिए, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना है, आपने बहुत अच्छा गाना चुना है, आपकी
1: हाँ
0: पसंद बहुत अच्छी है। नन्नू जी, हमें कॉल करने के लिए शुक्रिया, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो झांसी।
1: नमस्ते मैम। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। मैं शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ आपसे मैम।
0: बताइए शिवाजी, कैसे हैं आप और क्या करते हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम। मैं जो कि ब्लाइंड हूँ मैम,
0: जी
1: और समाज सेवा के कामों में लगा रहता हूँ मैम। जैसे कि हर 3 महीने में रक्तदान करना, गौ
0: अच्छा
1: सेवा करना,
0: जी
1: गौ को पानी रखना, चारा रखना, पक्षियों को दाना पानी रखना, और मैम समय समय पे गरीब लोगों को भोजन कराना,
0: अरे वाह सर, आप
1: और
0: बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा।
1: वृक्ष भी लगाते हैं वर्षा ऋतु में मैम,
0: जी हाँ
1: जगह
0: बिल्कुल,
1: जगह
0: इन
1: जाके।
0: दिनों बरसात का सीजन ऐसा होता है कि ऐसे पेड़ पौधे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लग जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते
1: उसमें
0: हैं।
1: इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती है मैम, देखिए पानी उनको खुद ब खुद मिलता रहता
0: जी जी
1: है।
0: जी
1: बस ये जरूरत ये है कि उनको थोड़ा सा बचाव करके लगाना होता है। टीजड़ वगैरह जाली लगा दीजिए,
0: जी
1: उसको जब पौधा बन जाता है, अच्छा बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको गाय वगैरह जानवर वगैरह खा भी नहीं सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो
0: शिवाजी,
1: बड़ा हो
0: देखिए
1: जाता
0: आप यही मैसेज देना चाह रहे हैं शायद कि पेड़ पौधे तो
1: है।
0: लगाना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी थोड़ी देखभाल भी हमें करनी चाहिए। लोग
1: जी
0: लगाकर
1: मैम,
0: पौधों
1: और
0: को
1: मैं
0: भूल जाते हैं। चलिए शिवाजी, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी, काफी
1: जी,
0: अच्छी आपने बातें
1: और
0: हमारे साथ
1: मैं तो
0: साझा की
1: सभी
0: हैं।
1: लोगों जी मैम, मैं सभी से अपील भी करता हूँ कि वर्षा ऋतु में प्लीज प्लीज पौधे जरूर लगाएं।
0: पौधे जरूर लगाएं और उनकी देखभाल भी जरूर करें।
1: जी
0: चलिए
1: बिल्कुल।
0: अब बताएं, आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना पसंद कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: मैम मूवी का नाम है साजन, और उसमें एक गाना रहेगा, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा।
0: तुमसे मिलने की तमन्ना है, ये कार्य गीत हम आपको लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म साजन से। शिवाजी जी, हमको फोन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से बोल रहा हूँ मैम, आपके केंद्र के नियमित श्रोता साथी आपका सुरेश कुमार सारथी।
1: सुरेश कुमार सारथी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में।
0: कैसे हैं आप मैम?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप बताएं आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
0: हमारे यहाँ का तो मौसम बहुत बढ़िया है और गर्मी से राहत मिल चुकी है हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को।
1: जी, चारों तरफ यही माहौल बना हुआ है, अब धीरे धीरे बारिश सब जगह आ चुकी है, ठंडक है वातावरण में, माहौल अच्छा है, सुकून है।
0: ठंडक है मैम और हरा भरा चारों तरफ हरियाली नजर आ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, तो आज बोई की काम भी शुरू हो गई है। किसानों के चेहरे पर उमंग की लहर छाई हुई है और मन लगाकर सब खेती बाड़ी में जुट गए हैं।
1: सुरेश कुमार जी, ये बात बताइए कि छत्तीसगढ़ को, जैसे आपने कहा, मैंने पढ़ा भी है, धान का कटोरा कहते हैं, तो धान के कौन कौन सी किस्में, कौन कौन से प्रकार होते हैं और आप वहाँ पर विशेष तौर पे क्या वहाँ का प्रसिद्ध है चावलों में?
0: यहाँ मैम HMT चावल वगैरह ज्यादा इधर बिकता है, बासमती है, HMT है और धान भी HMT बासमती और हरुणा सब धान लगाया जाता है मैम।
1: जी जी।
0: और इस बारिश में तो पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो धान ही लगाया जाता है। उसके बाद फिर राहर, चना, मूंग और अपना लाखड़ी, ये सब उगाते हैं मैम।
1: चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और अब बताएं अपनी पसंद।
0: अब पसंद में मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता पर फिल्माया गया है मैम, भयानक पिक्चर का नाम है और लता मंगेशकर की आवाज में है मैम। बहुत ही सुपर डुपर गीत रही है अपने जमाने की और आज भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में सुनने पर।
1: जी बताएं।
0: गीत का बोले मैम, भीगा भीगा मौसम आया, बरसे घटा घन घोर, प्रीत का पहला नटखट सावन, देखो मचाए कैसे सो, भीगा भीगा मौसम आए।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा, ये गीत आपके दिल के करीब है, आपने बड़े प्यार से इसको गाकर सुनाया हमारे

0: हेलो झांसी।
1: हाँ नमस्कार जी,
0: नमस्ते।
1: मैं रामचंद्र माखीजिया काफिर भाई बोल रहा हूँ, धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। मौसम कैसा है आपके झांसी में?
0: सर ये तो आप मैं आपसे पूछने वाली थी, आपने मुझसे पूछ लिया। चलिए, हमारे यहाँ झांसी में सुबह बरसात हो रही है
1: अच्छा,
0: दो तीन
1: इधर
0: दिनों
1: अभी
0: से।
1: धूप निकला है, सवेरे तक था, कल से बारिश था, लेकिन एक तार नहीं गिरा है ना, सब जगहों में गिरा है, प्रांतों में।
0: जी हाँ जी हाँ, ये अच्छी बात है। ये 4 महीने होते हैं वर्षा ऋतु के, जब अभी पानी नहीं गिरेगा तो कब गिरेगा।
1: जी
0: ये भी बहुत जरूरी है पानी, बरसात भी। तो बताइए, इस मौसम में आप क्या करना पसंद करते हैं?
1: इस मौसम में अपना भाई सुरक्षित रहना चाहिए, पानी उबाल के पीना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम जो है देखा जाए तो कृषि के लिए उत्तम है और जीव उत्पत्ति का मौसम है, सबसे अच्छा मौसम है, क्योंकि जल की समस्या दूर होती है।
0: बताएं, आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे
1: आज
0: हैं?
1: सुनाइएगा आप।

0: वर्षा पानी पानी ने आग लगाई वाला, इसमें म्यूजिक भी बढ़िया है और गीत भी बढ़िया है, इसको सुनाइएगा बहन।
1: मोहरा फिल्म से ये गाना है और हम आपकी पसंद का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। नमस्कार।

0: हेलो जासी।
1: हेलो, नमस्कार। मैं हिमलता मलिक।
0: हिमलता मलिक कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी, मैं चिड़गांव से बोल रही हूँ।
0: चिड़गांव झांसी से बोल रही हैं।
1: जी,
0: क्या करती हैं हिमलता जी आप?
1: मैं एक टीचर हूँ,
0: छोटे बच्चों की या बड़े बच्चों की?
1: जूनियर क्लासेस तक।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपको पढ़ना पढ़ाना दोनों चीजें पसंद होंगी, तो बताइए कुछ अपने क्लास के अनुभव या अपने स्टूडेंट्स के बारे में।
1: स्टूडेंट्स क्लास में हर तरह का बच्चा होता है,
0: जी
1: बहुत सा इतना प्रतिभावान होता है जिसको और बहुत आगे बढ़ाने का मन करता है, और हमेशा मैंने बढ़ाया भी है। और उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं
0: जी
1: जो कला के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में बहुत आगे गए हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ आसपास भी टीचिंग कर रहे हैं, कोई खेल में निकल गया, कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है, कोई कहीं
0: चलिए
1: जॉब कर
0: बहुत
1: रहा है।
0: अच्छी अध्यापिका है। इसका मतलब है आपके बच्चे पढ़ाए हुए इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंच गए हैं। चलिए, तो आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। और बताएं अपनी पसंद का गाना।
1: जी, मुझे दिल तो पागल का मूवी का गाना बहुत पसंद है, और टाइटल सॉन्ग। ओके,
0: चलिए, आपकी पसंद का ये गाना हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं। आपने हेलो झांसी में कॉल किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो झांसी।
1: हेलो मैम, नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: संतोष कुमार राव बात कर रहा था मैडम, उमरिया मध्य प्रदेश से। जी
0: का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। उमरिया से आप बोल रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं आप।
1: बिल्कुल मैम, और आपकी मुस्कुराहट से पता चल जाता है कि कार्यक्रम कितना प्रशंसनीय बन पड़ता है, क्योंकि जो फोन कार्यक्रम आते हैं और जो
0: चलिए,
1: आप
0: आप जैसे
1: ऐसे
0: श्रोता, जागरूक श्रोता जो होते हैं, जब बातचीत करते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे हैं और हमारा मन भी खुश हो जाता है बात करते हुए।
1: बिल्कुल मैम, मध्य प्रदेश से प्रसारित हमारा जो आकाशवाणी झांसी होता है, इतनी बुलंद आवाज और शैली के लिए माना जाता है, और जो है कि

0: भावना होती है और जो शैली का प्रयोग हम लोग करते हैं रेडियो पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ।
1: तो आप बहुत ही गहन विश्लेषण के साथ हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, ये अच्छी बात है। इतना हमें चिंतन करना चाहिए हम किससे जुड़ रहे हैं, किस प्रकार का बातों का या विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, यही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है।
0: बिल्कुल मैम, और सीख और समझ का एक मुख्य कारण होता है रेडियो। रेडियो इतना ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर के आता है, चाहे वो समाचार प्रभात हो या फोन इन कार्यक्रम हो, पत्र वाला कार्यक्रम हो, फरमाइशी कार्यक्रम हो, या फिर किसान जैसे भाइयों के लिए किसान वाड़ी कार्यक्रम हो, बच्चों के लिए कार्यक्रम हो, सभी में मोटिवेशन भरी हुई होती है।
1: जी जी बिल्कुल, ये लेने वाले के ऊपर होता है कि वो उसमें से क्या लेता है और कितना लेता है। तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे क्या फरमाइश रख रहे हैं।
0: मैम इस समय क्या होता है, मध्य प्रदेश पर मौसम मेहरबान है और बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून का पल है इस समय। और मूवी का नाम है संग्राम।
1: संग्राम, गाने के बोल।
0: भीगी हुई है रात मगर

0: हेलो झांसी,
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्ते। बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप कैसे हैं?
1: हम तो बढ़िया हैं, हम बसार से बोल रहे हैं।
0: बसार से अपना नाम बताएं। हाँ,
1: राजपाल यादव।
0: राजपाल जी बताइए, आपके यहाँ इस समय क्या चल रहा है, आप और क्या काम करते हैं?
1: काम तो खेती किसानी करते हैं और अभी तो बारिश हो रही।
0: बारिश हो रही है आपका जी? उत्तर भारत में देखिए सब जगह बारिश हो रही है इस समय, तो बरसात के दिनों में आप क्या करना पसंद करते हैं, भीगना या घर में बैठना?
1: अभी तो हम घर में बैठे हैं, अभी तो हमने बोन ही नहीं कर पाई।
0: और आप इन दिनों चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं?
1: हाँ दम से। पहली
0: चलिए आज बताइए, इस कार्यक्रम में आप क्या सुनना चाह रहे हैं?
1: पहली बार हमने मोहब्बत की है, कुछ ना आए समझ में हम क्या करें।
0: आपकी पसंद पर, आपकी फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: हेलो जैसे
1: हेलो।
0: हेलो जैसे भैया, कौन बोल रहे हैं? रीता
1: हम रीता कुशवाहा बोल रहे हैं।
0: कुशवाहा जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: झांसी से। हम
0: झांसी से आप बोल रहे हैं। रीता जी, क्या करते हैं आप?
1: टीचिंग करवा करते हैं प्री
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या बड़ों को? प्राइमरी।
1: प्राइमरी।
0: अरे वाह, बस नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे मिलते होंगे आपको। उन बच्चों के साथ कैसे आपका बन पाता है? बच्चे कभी परेशान भी करते होंगे, कभी अच्छे से खेलते भी होंगे, मुस्कुराते भी होंगे, तो आप उन्हें कैसे डील करती हैं?
1: सब हो जाता है, अच्छे से मैनेज कर देते हैं। परेशान
0: कोई बच्चा ऐसा है, कोई जिद्दी, कोई परेशान करने वाला?
1: करने वाला फिलहाल ऐसा तो कोई नहीं है, ज्यादातर बच्चे प्यार ही करते हैं।
0: चलिए, इसका मतलब आप एक अच्छी टीचर हैं, इसलिए बच्चे आपको प्यार करते हैं। बताइए, आप हमारे इस कार्यक्रम में आज कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: हम रिमझिम ग्रेस वाले।

así. अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग सीमा कुशवाहा का था। प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए आपको सुनवाते हैं रानू मुखर्जी के स्वर में गजल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी के स्वर में गजल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल, स्वर सतीश बब्बर का है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुरेश पाटीकर और साथियों के सुर में ये भजन। आइए अब सुनते हैं सुधा मल्होत्रा के सुर में ये भजन।

सुधा मल्होत्रा के स्वर में सुन रहे थे अभी आप ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार सुनिएगा जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज

0: हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियुक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of grow more, achieve more." Mr. Modi was addressing the Indian